0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
1: यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
2: दवी और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला।
3: म्यूजिकल थेपला
2: हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम।
3: रेडियो धूम,
2: धूम मचाते रहो।
4: Once again, hello जी, good evening कहूँ या फिर good night। वैसे good night कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक गुड वाली बात। Actually ना, I'm so sure कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी, पूरे टैंट्रम के साथ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। 4 काम हुए होंगे, 2 काम छूटे होंगे, 5 एडिशनल काम किए होंगे और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे, यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना। सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार। जो भी किया, जैसा किया, अच्छा किया। ट्रस्ट मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो। आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे, अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर। एज ऑलवेज, धूम मचाते रहो।
5: कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले।
6: इंडिया टॉप 10,
7: इंडिया टॉप 10
6: हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
8: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को 2 दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग 3 तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
9: NMLC ID 224649, Equal Housing Lender।

0: तुम्हारे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
1: पहले भी कह चुकी हूँ शायर, चढ़ान चढ़ते अगर तेरी सांस फूल जाए तो मेरे कंधों पे रखते कुछ बोझ मैं उठा लूं। वो चुप सी एक नज़्म पीछे बैठी जो टकटकी बांधे देखती रहती है मुझे बस। न जाने क्या है कि उसकी आंखों का रंग तुम पर चला गया है। अलग अलग हैं मिजाज सबके, मगर कहीं ना कहीं वो सारे मिजाज मुझ में बसे हुए हैं। मैं उनसे हूं या हाँ, मुझे ये एहसास हो रहा है जब उनको तख्लीक दे रहा था वो मुझको तख्लीक दे रही थी।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
1: और मस्नूई धुएं ने जो कई आफतें की थी, हंस के इतना भी कहा था तुमने, इतनी सी आग है और इस पे धुएं को जो घुमा होता है वो कितना बड़ा है। बर्फ के सीन में उतनी ही हसीन थी कल रात जितनी उस रात थी फिल्म के पहलगाम से जब लौटे थे, और होटल में खबर थी कि तुम्हारे शोहर सुबह की फ्लाइट से वहां पहुंचे हुए हैं। रात की रात बहुत कुछ था जो तब्दील हुआ। तुमने उस रात भी कुछ गोलियां खा लेने की कोशिश की थी, जिस तरह फिल्म के आखिर में ना करीना खुदकुशी करती है एक रेल के नीचे आकर। वर्त के सेंट की खुशबू थी थिएटर में गई रात बहुत।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।

0: Bollywood Buzz. Bollywood Buzz. Only on Radio Dhoom. Radio Dhoom. Dhoom machate raho. Tera buzz mujhe jeene na de.
1: वेल, क्या आपको अंटार्कटिका डेजर्ट की सबसे खास बात पता है? नहीं पता? अरे मैं बताती हूँ ना यार, रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसने की लगभग 5.5 मिलियन की जो मील्स हैं वो घेर कर रखी हुई हैं। जी हाँ, ऐसी ही और अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए रेडियो धूम पर मेरे साथ। कब? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे को मैं मिलूंगी आपको सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और बातें, साथ ही साथ आप इंजॉय करेंगे अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स। सो स्वीट हार्ट्स, इंतजार रहेगा मुझे आपका। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
3: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
2: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
4: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
5: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें, तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
4: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
5: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई।
3: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
6: तुमने हमारे प्यार का

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
1: मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, घर पे धोता हूं मैं हर बार उसे और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूं, मगर इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने इसकी, और धोने से गिले शिकों के चिकत्ते नहीं मिटते। जिंदगी किस कदर आसान होती रिश्ते घर होते लिबास, और बदल लेते कमीजों की तरह।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
2: किंग टू प्रमोट ए बिजनेस और ए प्रोडक्ट, हाउ अबाउट एन इवेंट टू रीच साउथ एशियन कम्युनिटी इन वन शॉट? कॉन्टेक्ट अस sales@dhoommedia.com और कॉल अस एट 412-455-5700, 412-455-5700। वी आर जस्ट ए फोन कॉल अवे।
3: भक्ति एक समर्पण भाव है, भक्ति एक विश्वास है, भक्ति एक आध्यात्मिक चेतना है, भक्ति एक सरल मार्ग है। सुनिए भक्ति रोज सुबह 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम।
4: When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I'd build secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes I'd do the same things over and over, until one day I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better.
5: Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
6: When I grow up, I want to be a new pair of blue jeans.
7: When I grow up, I want to be a kid's first computer.
8: When I grow up, I don't want to be a piece of garbage. And if you recycle me, I won't be.
9: Give your garbage another life. Recycle. Learn how at iwanttoberecycled.org. Brought to you by Keep America Beautiful and the Ad Council.
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
10: रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूं टलियां, सुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं? चौदहवीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है?
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।

0: New Kensington,
1: Pittsburgh.
2: The time is now 9 o'clock.
3: The current temperature, 51.
4: You are listening to Corner Seat, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho. You are listening to Corner Seat, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
5: Filmy trailer.
6: ये भूत प्रेत आत्मा शैतान, हम इन सब चीजों को नहीं मानते, ये सब बेकार की बातें हैं।
7: जो नियति में लिखा है वह निश्चित है, हम चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते।

0: यहाँ किस लिए आए हो?
1: यार राहुल, तू ये कहाँ लेके आया एडवेंचर के लिए? तुमने उस बंगले में कदम रखकर एक सोई हुई प्रेतात्मा को जगाया है, एक साय को चुनौती दी है फिर से अपना इतिहास दोहराने के लिए।
2: बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। सर, हमारा एक दोस्त सुबह से लापता है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कहीं पता नहीं चला सर।
3: देखो दोस्त, तो तुम्हारा हम ढूंढ लेंगे। जिंदा या फिर मुर्दा?

0: जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ दो।
1: बाबा, सिया को बचा लीजिए बाबा।
0: जब वक्त आ गया है उस शैतानी आत्मा की हकीकत जानने का।
2: आप उसकी चिंता ना करें साहब, आज के बाद मैं किसी रोहित या सिमरन को नहीं जानता।
0: और उसके बाद शुरू हुआ इस जंगल में मौत का तांडव।
3: ऐसी शैतानी आत्मा से छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता होगा।
0: इसे पवित्र जल से स्नान कराना होगा।
4: वंदना

0: थ्रिलर
1: आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती हैं,

0: सुन रहे हैं कौन सीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
1: वंस अगेन हेलो जी, गुड इवनिंग कहूँ या फिर गुड नाइट। वैसे गुड नाइट कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक गुड वाली बात। एक्चुअली ना आई एम सो श्योर कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी पूरे टैंट्रम के साथ कि ये करना है ये करना है ये करना है। चार काम हुए होंगे, दो काम छूटे होंगे, पांच एडिशनल काम किए होंगे और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना। सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार, जो भी किया जैसा किया अच्छा किया। ट्रस्ट मी आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो। आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर। एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
2: बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक।

0: टॉप 10 इंडिया टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। All State Lenders Corp has been satisfying hundreds of customers every year with their mortgage needs. चाहे आप first time home buyer हो या refinance करवाना है, कोई business या commercial property buy करनी है, call 732-951-0333 to speak to one of our loan officer for a free consultation. All State Lenders, आपके ख्वाबों का गुल्लक। Call 732-951-0333 or visit www.aslcmortgage.com.
2: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender.
3: Filmy Trailer.

0: मेरा नाम पृथ्वी है, मैं सीबर्ट शिप पर सर्विंग ऑफिसर हूँ। पता करिए सीबर्ट का कोई रिकॉर्ड है क्या?
1: बहुत सी कहानियां हैं सीबर्ट के बारे में। सीबर्ट हॉन्टेड है।
0: वहां उस वर्कर के अलावा एक लड़की भी थी शिप के पास,
2: जिसे तुम देख रहे हो ये तुम्हारा हेलुसिनेशन नहीं है बल्कि एक बुरा सा है।
3: शिप पर क्या हुआ था?

0: एक थोड़ी, पहले छह आना चाहिए।
1: एक
0: गया। अरे सुनो, कोई बकरा आ रहा है, जा तू।
1: मेरी घड़ी कहाँ गई?
0: मुझे क्या मालूम,
1: आपने चुराई होगी।
0: क्या मतलब, मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? क्या ये कहाँ से आई?
1: घड़ी दीजिए मेरी।
0: मगर नहीं, हाँ लेना यार,
1: घड़ी दीजिए ना।
0: लेना जा।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, क्या है?
2: मिनिस्टर साहब घर में हैं।
0: तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है?
2: जी नहीं।
0: फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो खड़े रहो, मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में है तुझ में और तुझ में है।
2: जी मैं कुछ समझा नहीं।
0: मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है
2: सर। मेरी एक लड़की है।
0: मेरा शादी करने का कोई रास्ता नहीं है।
2: मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था।
0: मेडिकल कॉलेज में?
2: जी।
0: आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था।
2: 105?
0: 100 लिखाई के, 5 सफाई के।
2: सफाई के?
0: अरे कुछ लिखाई नहीं, तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाकर उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया? अभी सीट दिलाता हूँ।
2: सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे।
0: सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ।
2: सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाएं, उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाएं, उन लोगों को भी बेच दिया जाए तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा।
0: अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं?
2: सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए।
0: साला, अबे 5,000 देगा?
2: मेरी औकात नहीं है।
0: 500 रुपया देगा?
2: तनख्वाह नहीं है मेरी।
0: अबे तो तेरी औकात कितनी है?
2: 5 रुपए की।
0: होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू थू थू, हट। इसे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से।
2: मगर मेरा एडमिशन।
0: मैं निकल, तेरी
2: मेरी बच्ची का
0: जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो, हवलदार पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो। बताओ 5 रुपए रिश्वत देता
3: हूँ। हम तेरी से आए।

0: You are listening to Conoseat, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
1: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूँ, तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
2: వెల్కమ్ టు రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ. ప్రతి శనివారం 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో ధూమ్ మీడియా .com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు. You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday.
3: Hangover. Hangover. Her Saturday or Sunday, subah 7 se 11, only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
4: Filmy trailer.
5: Sahil, tumhara us ladki ke saath kya rishta tha?
6: मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।
7: आई लव यू मेहती।
8: आई लव यू टू।
6: सब कुछ सही चल रहा था सर, फिर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया। 3 साल से मैंने उसको देखा तक नहीं है सर, कहां है, क्या कर रही है, कुछ नहीं जानता मैं।
9: वो लड़की तो कह रही कल रात तुम उसके घर पहुंचे, उसे अटैक किया तुमने। सर मुझे नहीं बताओ ऐसे क्यों बोल रही हो।
6: क्यों किया ऐसा मेरे साथ?
10: क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों?
6: सर कुछ तो प्रूफ होगा उसके पास, सीसीटीवी फुटेज समथिंग।
11: सर आपके घर पे कोई नहीं आया था।
8: कॉलेज में साहिल मेरा नाम का एक लड़का मेरे पीछे पागल था, हमेशा घूरता बात करने की कोशिश करते रहता मुझसे। अचानक उसने मुझे प्रपोज किया।
6: I love you, मेहती।
8: I'm sorry, साहिल। मुझे क्या पता था कि मेरे ना सुनने पे वो पागल हो जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स को मारने पीटने लग जाएगा।
6: पागल हो रहा है, I'm going mad।
8: उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इस बात को 3 साल हो चुके।
12: तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया?
9: सर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर, प्लीज ट्रस्ट मी।
6: अरे पर क्यों फंसाएगी तुझे?
12: क्योंकि हम दोनों के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था सर।
6: जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
8: हिम्मत है ना तो सामने आ, छोड़ूंगी नहीं तुझे।
6: अरे छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं। नीति,
12: 4 नवंबर की रात को क्या हुआ था?
6: क्या तुमने साहिल के साथ ऐसी कोई हरकत की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी?
7: क्यों किया ऐसा मेरे साथ?

0: अंकल पर गोलियां चलाएंगे।
1: तो क्या करता हूँ भाई, काली बुकट बेहोशी का नाटक कर रहा। बुढ़ा
2: बुढ़ा कह रहे, कोई तमीज ही नहीं है बात करने की।
0: इनके अंकल को तुम बुढ़ा कहोगे? बुढ़ा ये मत भूलो कि वो बुढ़ा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी गोली चलाने की?
1: अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सुंगाऊंगा तो होश में आ जाएगा।
2: पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को तो?
0: एक आध गोली लग जाती तो अंकल को?
1: गलती हो गई, सॉरी।
0: नहीं चत्तपंट भाई, अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली?
2: और भाई साहब वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे।
0: कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? साला मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को धुआं दोगे साले? छोड़ दो,
1: मार दो मेरे को, मार दो। लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई।
0: अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। बल्लू बता क्या किया था इसने, बता।
3: मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई।
0: सुना, दिल का बुरा नहीं है ये, मुझे टेंशन में देख नहीं सकता। इतनी फिक्र क्यों करता है मजनू? संजना की मंगनी 13 तारीख को ही होगी। राजीव बड़ा समझदार लड़का है, अपने अंकल को होश में लाएगा, समझाएगा, लेकर आएगा। तू फिकर मत कर। हा?
1: तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे, मंगनी में अपने अंकल को ये लेकर आएगा या मैं लेके आऊं?
2: अब आप ही ले आइए मजनू जी।

0: आप सुन रहे हैं कॉनसीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
1: हेलो हाय एम ट्रू, मेरा नाम एम ट्रू, आई मीन मैं हूँ आपके आरजे श्री आपके साथ और मैं रहती हूँ आपके कानों के पास रेडियो धूम पर मंडे टू फ्राइडे शाम 4 से 7 करने आपसे ढेर सारी बातें। क्या बात, कैसी बात और किस लिए वाली बात, इन सारे लॉजिक के साथ मिलने वाली हूँ आपको रेडियो धूम पर। तो कान टिका के दिल लगा के सुनते रहो रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
2: वेल, क्या आपको अंटार्कटिका डेजर्ट की सबसे खास बात पता है? नहीं पता? अरे मैं बताती हूँ ना यार, रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसने की लगभग 5.5 मिलियन की जो मील्स हैं वो घेर कर रखी हुई हैं। जी हाँ, ऐसी ही और अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए रेडियो धूम पर मेरे साथ। कब? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे को मैं मिलूंगी आपको सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और बातें, साथ ही साथ आप इंजॉय करेंगे अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स। सो स्वीट हार्ट्स, इंतजार रहेगा मुझे आपका। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: हेलो हेलो, ओह आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
4: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
3: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: Good morning Pittsburgh. Good morning Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Hello hello hello. Hello hello hello. This is RJ Mahi. This is RJ Mahi from Radio Dhoom. Radio Dhoom.
6: Sunna na bhule. Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Monday to Friday 7 se 10 only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
7: फिल्मी ट्रेलर।
8: मंदिरा तुम्हें शर्म नहीं है हगड़ू बच्चों के साथ मस्ता रही हो? ससुराल वाले पूछेंगे लड़की को चूल्हा चौका से हटके और क्या आता है, तो कह देना कि पतंगबाजी करवा लो।
9: अभी किस्मत वाले ऐसे माँ बाप जिनकी लड़की ने लड़कों की नाक काट रखी है। एक
10: सावधान, देखते रहिए मुसीबत ओटली मैंने मेरे साथ यानी पप्पू मिश्रा के साथ।
11: भाई धनलगंज की शान है, आप
12: हीरो हैं भाई साहब। आप
13: तो बचाना नहीं क्या?
12: नहीं, फालतू टाइम कहाँ है पिक्चर देखने को।
14: जो कभी कभी एक नजर में होता है ना, वो मुझे भी हो गया।
15: तुलसीदास सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे, आप भी कुछ वैसा ही कर गए हैं जना।
14: उन्होंने शादी के बाद किया था, हम तो शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं।
10: फिक्सिंग के बहुत से किस्से सुने होंगे आपने, पर ये मैरिज फिक्सिंग का अनोखा कारनामा है। कौन है ये लोग?
16: लड़का कितना फेमस कर दिया हमको। ससुरा सवाल किए ना, भी जवाब तो देना ही पड़ेगा।
17: वो अबला की चिंता अब ना करे, वो अब आपके अकाउंट में नहीं है, उसका नया खाता खोल दिया हमने।
18: हो भागे हमारे की, आप हमारी जिया जी बनेंगे।
19: आप अपने आप को संभालिए, हमारी चिंता मत कीजिए।
17: कैसे ना करे, विष्णु तो हमारा भाई जैसा है
15: और आप बहन जैसी।
11: दुनिया है
17: बहुत लिटरेरी है।
2: कहीं चल रहा गायक
16: को अपने बछड़े से अलग किए
13: हैं तो मेनका गांधी से शिकायत कर दीजिए।
1: हम कह रहे हैं सम्मान समझकर सरमाथे पे रख लो, इससे बढ़िया रिश्ता मंदिरा के लिए हो ही नहीं सकता।
3: उसके पास हथियार है ना, तो हमारे पास भी है।
5: आखिरी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल होगा।
14: बाबा भंडारी से दुश्मनी ले रहा है।
19: गाड़ी में अपनी सीट पे चिपके रहना, रास्ते में हगना मुगना, पखाना और पेशाब का दीदार अगर सरहद की हद पार करने के बाद होगा तो माशा अल्लाह सुकून से।
17: क्या पीजिएगा, मंगवा लेते हैं।
3: ब्लैक कॉफी अमेरिकाना,
15: घोड़े के मूंछ जैसा लगता है काली कॉफी।
3: बाबा साहब सर्विस करने से पहले ना
2: हो सब कुछ।
7: फिल्मी
4: ट्रेलर।
20: ये आपका लाडला जो हर छोटी सी छोटी बात मुझसे पूछा करता था, आज इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा के, अपनी हंसी में दबा के पराया करती है इसने आज अपने भाई को। मामी, पूजा के जाने के बाद मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुन्ने को कभी मां की कमी महसूस ना हो। मैं तुमसे पूछता हूं निशा, अगर तुम मुन्ने को उसकी चाची बनकर अपनाती तो क्या तुम्हारी ममता कम हो जाती? बोलो निशा, बोलो। चुप क्यों हो निशा, जवाब दो। अरे पगली, सारा जीवन सारी खुशियां त्याग करने चली थी? सच मानो तो गलती मेरी ही थी पूजा, मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी।

0: KY.
1: New Kensington.
0: Pittsburgh.
1: Here
2: we go. The time is now 10:03.
3: The current temperature 50.
4: आप सुन रहे हैं कॉर्नर सीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो. आप सुन रहे हैं कॉर्नर सीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो.
5: फिल्मी ट्रेलर.

0: आपने मुझे यहां क्यों बुलाया?
1: इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता।
0: तो पुलिस स्टेशन बुला लेते, वो तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है।
1: देखो विजय, जो भी हो अब भी तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो जो देखो अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
0: जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं?
1: विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं, कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा न हमदर्दी। अगली बार तुम्हें एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा।
0: ये फैसला तो आप कई बरस पहले मेरे बचपन में ही कर चुके थे, जब मैं उन बदमाशों के अड्डे में कैद था और मैंने फोन पर अपने बाप से बात की थी और दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई दी। और आज भी क्या है, आज भी आपकी आवाज से एक पुलिस ऑफिसर के लहजे की बू आ रही है।
1: विजय, तुम्हारे सोचने के तरीके पर अफसोस होता है मुझे, अफसोस ही नहीं होता, शर्म आती है मुझको। मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी आसान करने के लिए तुम्हें यहां नहीं बुलाया ना। यह बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी मां बहुत बीमार है। वो मुझे कहती नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम्हारा और मेरा नाता तो टूट चुका है लेकिन अगर मां के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है तो मेरा मशवरा है कि जाकर उसे मिल लाओ।

0: You are listening to Corner Seat, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
1: Filmy Trailer.
2: मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बम ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की।
3: मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। आई हैव बीन शॉट। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं।
4: अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे।
5: '93 में एक टन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है।
4: हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा।
6: मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने।
3: मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली, उसका क्या?
7: रुक जा!
8: शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता।
3: इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है, लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा।
5: सूर्या, वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर।
3: इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को।
9: क्या करे सर, शिवगढ़ चले?
3: ये काम एक ही कमी ना कर सकता है।
10: इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए।
3: जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया।
11: अक्का, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम?
12: मन भवर उठे, तन जिहर उठे, जब खबर उठे के आवे
3: सिंघम। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है
9: और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है?
11: किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो अभी।

0: आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान।
1: सरजी
2: वाह, बाप बेटी दोनों यही है। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लोग अच्छे से रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ।
3: अरे वाह,
4: फिर वही रिश्ता।
2: अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं क्या?
4: ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया?
2: पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा।
4: दीजिए,
2: ये लो जा। सर बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं, कमल आय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिसर है, 400 ट्रक है, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं।
3: ईमानदार हैं?
2: ईमानदार वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। पर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा।
3: क्यों?
2: मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप है, आप लड़की के बाप है, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप कितना लंबा भाषण पिला देंगे, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं, मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाएगा, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा खा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी आइए आइए।
5: नमस्ते जी।
2: नहीं मैं नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो। आप कहाँ थे इतनी देर से? आइए सर, ये लीजिए।
3: नमस्कार।
2: ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है।
5: नहीं नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया।
2: कैसे?
5: लड़का मैं हूँ।
3: अच्छा,
5: ये मेरे पिताजी हैं
3: जी,
5: ये मेरी माताजी हैं।
4: नमस्ते।
5: और ये हमारे मैनेजर साहब हैं।
2: पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो।
5: मैंने?
3: अच्छा आप लोग बैठिए ना।
2: हाँ मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का?

0: आप सुन रहे हैं कौन सीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
1: वंस अगेन हेलो जी, गुड इवनिंग कहूँ या फिर गुड नाइट। वैसे गुड नाइट कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक गुड वाली बात। एक्चुअली ना आई एम सो श्योर कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी पूरे टैंट्रम के साथ कि ये करना है ये करना है ये करना है। चार काम हुए होंगे, दो काम छूटे होंगे, पांच एडिशनल काम किए होंगे और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना। सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार, जो भी किया जैसा किया अच्छा किया। ट्रस्ट मी आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो। आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर। एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
2: ओ गुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नु हंजुआ नाल ना धोवी, मिलदी है खुशी तेनू हसदे देख के, सानू मौत भी आ जावे तां वी ना रोवी। मिट्टी दी खुशबू पंजाबी म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटाक ठोको ताली।
3: Hangover, हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
5: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender।
6: फिल्मी ट्रेलर।

0: जानता हूं एक गाना पूरी दुनिया बदल सकता है सर।
1: एक गाना दुनिया बदल सकता है। कहां है ये?

0: माँ जी आपके बेटे होशियार चंद जी अभी तक नहीं आए।
1: आ गया।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मेरा ही नाम चौधरी होशियार चंद शिकारपुरी बारूद वाला है।
2: आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
3: क्या चलते हो?
1: आपको मुझसे मिलकर खुशी हो सकती है मगर मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या है?
4: क्या करता है तू? बेचारे मेहमान है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
1: तो करने दो ना, मैंने थोड़ी बुलाया था इनको। कोई भी आता घर में बिठा लेती उनको। क्या है भाई, कोई चंदा लेने आप लोग?
0: अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। मेरा नाम शादीराम घरजोड़े है, मैं शादी के रिश्ते जोड़ता।
1: मतलब शादियों के दलाल हैं आप? कैसे आना हुआ?
0: पता चला आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसलिए लड़के को साथ लेकर आया हूँ। ये लड़के के पिता श्याम सुंदर जी हैं और ये लड़का गुड्डू और ये उनकी माता जी है।
1: तो
0: लड़की को बुलाओ, लड़का लड़की को देखेगा, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आए तो बाकी बातों की चर्चा हम आराम से कर सकते हैं।
2: मालती, मालती!
1: जब तक मेरे गले से हुकुम की आवाज बाहर नहीं आएगी तब तक तेरे गले से कोई आवाज नहीं निकलेगी। मैं पहले इनको टटोल लूं, अपनी दिमाग की कसौटी पर इनकी हैसियत को घस लूं, जब इनकी हैसियत मुझे भा जाएगी तब मेरी बेटी इनके सामने आएगी। समझा बहरे?
3: जी जी राजी।

0: You are listening to Corner Seat only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
1: Filmi trailer.
2: ये है बनारस। इस शहर की बात कुछ खास है और हम हैं यहाँ के गन्स ऑफ बनारस, यानी आज के युवा लौंडे। गुड्डू शुक्ला इंट्रोडक्शन है हमारा।
3: सहरा सजेगा, घोड़ी चढ़ेगा तो बैंड बजेगा।
4: एग्जाम देने और पास करने में फर्क होता है।
2: महादेव की कसम आज तक हम फेल नहीं हुए।
5: रिपोर्ट वापस लेने को बोल।
2: नहीं लेंगे हम वापस कोई केस।
6: मादर
7: उस हरामजादे ने सबके सामने हम पर हाथ उठाया, उसको तो हम ही मारेंगे, वरना हमारा नाम विक्रम सिंह नहीं।
8: बंदे हैं शंकर के,
2: हमारा नाम गुड्डू है और हमने आपके छोटे भाई पर हाथ उठाया था।
9: तुम सुनते कम हो हमारे।
5: हम कहां किसी के सुनते हैं त्रिलोकी जी।
2: गलती कर दी उस दिन तुम्हें छोड़ के, उसी दिन मार देना चाहिए था तुम्हें।

कहते थे कुछ रिश्ते जमीन से होते हैं और कुछ रिश्ते खून से।

जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: Y.
1: New Kensington.
0: Pittsburgh.
2: Here we go. The time is now 11:02.
3: The current temperature
2: 47.
4: You are listening to Corner Seat only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho. You are listening to Corner Seat only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
5: Filmy trailer.
6: Log rishton mein hade paar karte hain. Mera ek aisa rishta tha jiske liye maine sarhade paar kar di. बाबा हमेशा खिलाते थे ना,
7: तेरी माँ के लोग भी फैले आओ, गाली देना बंद कर।
6: मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ।
8: ए रॉनी, चलना।
6: कहाँ?
8: हमारे साथ।
6: भाई, रूटीन पेपर वर्क है, करके आ जाओ।
8: और बता क्या चल रहा है?
9: फिलहाल हम खजूर खा रहे हैं। अरे लगता है बैकअप नहीं मांगी, तुम रुको, हाँ हम आते हैं।
10: विक्रम?
9: Yes.
10: विक्रम, कौन मारे तुझे? Hey, छोड़ मेरे भाई को!
6: If anything happens to my brother, I'll kill both of you.
11: We are not two. We are not 100. We are a whole country.
6: तुम्हारा भाई विक्रम कल से गायब है। तुम ये सब कैसे जानते हो?
11: So who do you think can do this to your brother?
6: Abu Jalal Gaza.
12: Abu Jalal insaan nahi hai, parchhai hai.
13: Agar Abu Jalal mile to uski macho beep dena.
10: Jaish al-Asghar.
11: No one can stop me.
10: Jab bhi hum mushkil mein hote the, हम चिल्ला के उसे बुलाते थे।
6: अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो कसम हमारे बाप की, तुम्हारे देश को उस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा।

0: आवाज किसने कहा रहे?
1: मैंने नहीं कहा।
0: शराबी की आवाज किसने लगाई?
2: नॉट मी सर, नो।
3: हमारे मुंह में तो पान है, हम तो बोल ही नहीं सकते।
2: मैंने कहा बोला?
3: विक्की बाबू आग पानी पी सकती है मगर आप शराब नहीं पी सकते।
4: अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे?
5: अरे ये तो शेर हो गया।
4: शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे?
0: आखन सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए।
2: गुड मॉर्निंग विकी।
0: गुड मॉर्निंग डैडी।
2: विकी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है। और हां, 11 तारीख को बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना।
4: देखा मुंशी जी, बिजनेसमैन हो तो डैडी जैसा, इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एहसास है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी जो है खाली बोतल से भी बदतर है, उसका कोई एहसास नहीं। 24 घंटे बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस।
6: बेटे विक्की, बस बेटे।

0: सुन रहे हैं कॉर्नर सीट ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: फिल्मी फिल्मी ट्रेलर ट्रेलर।
2: मम्मी का बेटा ये है। नहीं, सीधे टाइम तो कह रहे थे शादी कर ले, फिर झगड़ा हो गया और उसने बोल दिया।
3: नो माँ, आई एम नॉट गे। अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है?
4: नहीं हो सकता माँ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ।
5: जब भी कोई लड़की देखूं, मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले।
3: फैमिली ना आदमी को चोमू बना देती
5: है।
6: शेर हूँ मैं शेर, और शेर तब तक राजा होता है जब तक अकेला रहता है।
7: हाय, और कौन कौन रहता है यहाँ?
3: बस जी, मैं और मेरा स्वैग।
7: 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो।
3: मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ, समझी?
8: क्यों समझे? प्रॉब्लम,
3: आप बाप हैं और ये आपकी बेटी है।
7: आप कुछ करते भी हो या सिर्फ ड्रेसअप होके पार्टी?
3: बहुत बिजी आदमी हूँ मैं। अपनी माँ से बात की?
7: उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती।
3: जेल में है क्या?
7: This is really embarrassing, huh? I can't believe मुझे अपने मम्मी को अपने पापा से मिलवाना पड़ा।
9: Congratulations, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया।
3: अपनी एक्साइटमेंट में किसी को कुछ बता मत देना, बर्बाद हो जाऊंगा मैं।
9: Are you sure ये
3: हिप्पी तुम्हारी माँ है?
7: Okay guys, stop. Please, stop it.
3: ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ। इसके पेट में इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। डिम्पी इसका चाचा लगता है। आप इसके दादा दादी लगते हो, अब परदादा दादी बनने वाले हो।

0: तुमने मुझे 21 साल से ये नहीं बताया कि मेरी एक बेटी है। एक कॉल कर देती।
1: I hate phone calls.
2: Filmy trailer.
3: साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी मुरारी अरे मुरारी क्या यार ये देख देख देख लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले।
4: अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार पहनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसी शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है।
3: अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या, वो भी हर रोज?
4: अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया।
3: ए मुरारी जी, दादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़, और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह।

0: You are listening to Corner Seat, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. We emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
0: Corner Seat. Monday to Thursday, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, only on Radio Dhoom. धूम मचाते रहो।
3: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉप हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
4: NMLC ID 224649, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
5: फिल्मी ट्रेलर।
6: भी दोस्तों के कांटेक्ट में हो?
7: हूँ भी और नहीं भी। शुरू में तो हम सब साथ थे, पर अब किसी के पास वक्त नहीं है।
8: ग्रैंडपा एडी?
9: एंथनी?
8: ये मार्था और बेथनी हैं, ये स्पेंसर के ग्रैंडपा हैं।
10: नाइस टू मीट यू।
11: मॉर्निंग।
8: सॉरी आपको डिस्टर्ब किया।
6: नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए यही काफी है।
11: माइलो वॉकर।
6: ये तुमने स्पेंसर को कहीं देखा?
10: वो वापस गेम में चला गया, हमें उसे लाना होगा।
12: तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमने तो प्लेयर्स भी चूज नहीं किए।
10: ओह, मुझे ऐसी एंट्री कभी अच्छी नहीं लगी।
13: तुमने कुछ सुना
6: है?
10: हाय स्पेंसर। क्या
13: तू कौन है?
10: ओह माय गॉड, तुम स्पेंसर के ग्रैंडपा हो?
13: मैं जंगल कैसे पहुंचा?
10: और तुम?
14: माइलो वॉकर। मैं कहीं मर मरा कर कोई छोटा मोटा फिट लौंडा टाइप तो नहीं बन गया?
13: क्या हम मर चुके हैं?
10: बेथनी?
12: नहीं नहीं नहीं।
10: फ्रिज?
12: अब मैं मोटा भद्दा आदमी हूँ, मेरे साथ ये नहीं हो सकता।
13: मेरा कमरा कमरिया हो गया है।
12: मेरी टांगे देख,
13: मेरे लटके झटके देख,
12: वो सब छोड़ ये देख।
10: ओके, सिर्फ इस गेम की नहीं, हम सबके भी वाट लग चुकी है।
12: तो ये गेम है? मुझे नहीं खेलना, उम्र हो गई है यार।
15: वेलकम टू जुमंजी।
9: ये अगला अभियान कुछ ज्यादा ही तूफानी है, याद रखना जुमानजी का भविष्य आपके हाथों में है।
13: पायलट बाबा पहले मुझे बताओ कौन है ये जुमानजी?
14: बैनर्जी चैटर्जी जुमानजी।
11: हमारा मरना पक्का,
14: हम मर चुके हैं।
13: क्या हम स्वर्ग में हैं?
14: नहीं नर्क में।
10: माँ क्या?
16: ये गेम तो नए सिरे से शुरू हो रही है। यहाँ पर सर के पीछे आंखें होनी चाहिए।
17: ये एनाकोंडा ऊपर कैसे चढ़ा?

0: अब ये क्या पला है?
1: ये तुम्हारी ताकत और कमजोरी है।
0: जबरदस्त मर्दानगी।
2: वही सड़ा हुआ चेहरा जो तुम बनाते हो।
3: क्या हुआ? बीपी हाई हो गया क्या? सांस ले, सांस छोड़, तेरा मूड टेढ़ा हो रहा है। एडी।
4: फिल्मी फिल्मी ट्रेलर
5: अरे
6: ओफो, तुमको देखकर वो मेरी भतीजी को लेकर भाग गया।
5: अरे तुम्हारी भतीजी की भाड़ में मेरा बेटा भाग गया।
6: अरे वाह, वो आपका बेटा है? हेलो, मैं उसकी माँ हूँ।
5: तुम्हारी भतीजी?
6: हाँ।
5: मेरा बेटा तुम्हारी भतीजी के साथ क्यों भागा?
6: जवान लड़का अपने बाप को देखकर लड़की के साथ क्यों भागता?
5: क्या मतलब
6: बताओ? चलो मेरे साथ, कम आओ ना, कम फॉलो मी। अरे चलो ना।
7: कर रहा है, छोड़ दे इसे।
8: नारायण नारायण नारायण। भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत?
7: अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे।
8: छोड़ दो।
9: तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की?
7: इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या संन्यास ले लेगी?
9: तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ।
7: टिकट न दे इसे। आप अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा।
8: आपने कभी मारा है उसको?
7: हाँ, बचपन में बहुत मारा है।
8: मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी उसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ।

0: आप सुन रहे हैं कॉनसीट ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
1: फिल्मी ट्रेलर।
2: ये अजीब ही केस हुआ है यहाँ पे। ड्यूटी पे कौन था?
3: यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड।
2: उसका स्टेटमेंट लिया?
3: बहुत डरा हुआ है।
2: क्या देखा तुमने यहाँ? वैसे ये बॉडी थी किसकी?
3: क्या आप माया वर्मा को जानते हैं?
2: She was a powerful businesswoman.
4: इस वक्त इसके पति के अलावा इसके फैमिली में और कोई नहीं।
2: मिस्टर पुरी करते क्या?
4: माया की लेबोरेटरी में डायरेक्टर है फिलहाल तो।
5: और सर विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है।
2: आपके साथ किसी की ऐसी दुश्मनी थी जो वो निकालना चाह रहा हो?
6: बिल्कुल नहीं।
2: आप क्या करते हैं अपने दुश्मन के साथ?
6: यहाँ पे मुझसे सवाल पूछने से अच्छा है आप जाके बॉडी ढूंढिए ना।
7: माया की बॉडी मॉक से गायब होगी।
2: अब मुर्दे खुद तो उठकर कहीं जा नहीं सकते। कोई तो अंदर घुसा है और बॉडी चुराई गई है।
8: क्या वो बच सकती थी?
7: मैंने सब कुछ सही किया था। उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था।
9: आज रात तुम सिर्फ मेरे हो।
2: ऑटोप्सी से बचने की कोशिश है ये, क्योंकि मर्डर छुपाया जा रहा है।
7: ये सारा खेल माया का है। She might be faking her death. हम दोनों के अलावा सिर्फ माया को पता हो सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
9: तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना?

0: ऑर्डर छुपा रहे वो।
1: माया कुछ कहना चाह रही है।
2: आज रात तुम सिर्फ मेरे हो।
3: मिस्टर पुरी, आई नो यूर इनसाइड। मिस्टर पुरी बाहर आइए प्लीज। मिस्टर पुरी।
4: फिल्मी ट्रेलर।
5: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
6: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
5: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना यह पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
6: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
5: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
6: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
5: ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं।
6: कौन सी नई बात है? हाँ, आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
5: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहां इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
6: आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए।

0: New Kensington,
1: Pittsburgh.
2: The time is now 12:03.
3: The current temperature
2: 45.
4: आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है भाई? मेरे पास शशि कपूर है भाई, जो हमें काफी एंटरटेन करते रहे भाई। आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, और आज वाकई जिनकी हम बात करने वाले हैं उनका नाम है शशि कपूर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक उसे पहुंचाने में कपूर खानदान का काफी योगदान रहा है, और कपूर खानदान ने बॉलीवुड को ना सिर्फ कई बेहतरीन फिल्म्स दी हैं बल्कि कई सुपरस्टार एक्टर भी इस इंडस्ट्री को दिए हैं। वहीं कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले शशि कपूर का नाम भी बॉलीवुड के उन महान अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए काफी लोगों का दिल भी जीता है। और शशि कपूर जी के बारे में आज के शो में बात होगी, तो बस सुनते रहिए रेडियो धूम अब बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, और जो भी करूं प्रेम से, और आप सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। बॉलीवुड तमाशा और चल रहा है रेडियो धूम पर, आज राज के साथ धूम मचाते रहो।
1: आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है?
2: बाय, मेरे पास रेडियो धूम।

अरे भाई क्या बात है भाई। शशि कपूर जी की बात चल रही है, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर की। सो शशि कपूर ने कई सारी हिंदी फिल्म्स में काम किया है, साथ ही कई फिल्मों का डायरेक्शन भी इस महानायक ने किया है। आज हम आपको शशि कपूर के जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो बलबीर राज कपूर यानी कि शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के यहाँ हुआ था। कोलकाता में जन्मे बलबीर राज कपूर को उनके परिवार के लोग प्यार से शशि बुलाया करते थे, और शशि कपूर से बड़े उनके दो भाई थे जो कि अभिनेता राज कपूर और शम्मी कपूर थे। और शशि कपूर के फैमिली के लगभग सारे मेंबर फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। और भी काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं शशि कपूर के बारे में, बस आप सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप तो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।
1: अच्छा है ये देखिए बॉलीवुड तमाशा, ये रेडियो धूम, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो सुनते रहिए रेडियो धूम पर बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ।

0: धूम मचाते रहो। अच्छा है, अच्छा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: मुकम्मल किताब हूं, तेरा ही अल्फाज हूं, अधूरा सा ख्वाब हूं पर लाजवाब हूं। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: వెల్కమ్ టు రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ. ప్రతి శనివారం 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో ధూమ్ మీడియా .com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు. You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday.
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉप हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
5: NMLC ID 224649 इक्वल हाउसिंग लेंडर।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
6: बाय, तुम साइन कर दो कि नहीं? बाय। हाँ जी, आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने हार जराज के साथ। और अपनी फिल्मों के बारे में नहीं, अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए भी काफी मशहूर थे शशि कपूर, और शशि कपूर की बात आज हम कर रहे हैं। तो शशि कपूर की अगर बात की जाए तो उनकी मुलाकात अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल से इस साल 1956 में यानी कि 1956 में कोलकाता के एक थिएटर में हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने जुलाई 1958 में मुंबई में भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। वहीं जेनिफर का जो निधन था साल 1984 में कैंसर से हुआ, और वाइफ की डेथ के बाद शशि कपूर एकदम अकेले हो गए और उन्होंने फिल्मी जगत से बहुत दूरी बना ली थी। और शशि और जेनिफर के 3 बच्चे हैं जिनके नाम कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर है। और शशि कपूर के फिल्मी करियर के बारे में भी बात करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: नहीं है ना, क्या मत कर रहे हो? आप सुन रहे हो रेडियो धूम,
1: रेडियो धूम
0: आइला, धूम मचाते रहो,
1: धूम मचाते रहो।
0: हाँ
2: खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप आरजे राज और बॉलीवुड तमाशा। सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा आरजे राज के साथ रेडियो धूम पर, धूम मचाते रहो है बच्चे की जान लोगे। अरे आज जिनकी बात कर रहे हैं बॉलीवुड के माया नायक हैं, उनका नाम है शशि कपूर है, शशि नहीं शशि।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा आपने आरजे राज के साथ। और शशि कपूर बहुत ही कमाल के एक्टर और इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, मजा आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी सुन के। और बचपन से ही शशि कपूर को एक्टिंग में काफ़ी शौक था, क्योंकि ऑलरेडी पूरी फैमिली ताल्लुक रखती थी एक्टिंग से, सो उनका ये शौक आगे बढ़कर उनका करियर बन गया। शशि कपूर ने 1940 में फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इस महान अभिनेता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 4 फिल्मों में काम किया है। अपनी लाइफ के दौरान शशि कपूर ने कुल 160 फिल्मों में कार्य किया, जिसमें से 12 फिल्में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी में की हैं। क्या बात है भाई, कमाल कर दिया। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप दो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।
1: क्या आपको अंटार्कटिका डेजर्ट की सबसे खास बात पता है? नहीं पता? अरे मैं बताती हूँ ना यार, रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसने की लगभग 5.5 मिलियन की जो मील्स हैं वो घेर कर रखी हुई हैं। जी हाँ, ऐसी ही और अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए रेडियो धूम पर मेरे साथ। कब? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे को मैं मिलूंगी आपको सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और बातें, साथ ही साथ आप इंजॉय करेंगे अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स। सो स्वीट हार्ट्स, इंतजार रहेगा मुझे आपका। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: Good morning, Pittsburgh. Good morning, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. This is RJ Mahi. This is RJ Mahi. From Radio Dhoom. Radio Dhoom.
3: Suna na bole. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Monday to Friday, 7 se 10. Only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho. Bhakti, ek samarpan bhav hai. Bhakti, ek विश्वास है। भक्ति एक आध्यात्मिक चेतना है। भक्ति एक सरल मार्ग है। सुनिए भक्ति रोज सुबह 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम।
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। All State Lenders Corp has been satisfying hundreds of customers every year with their mortgage needs. Chahe aap first time home buyer ho ya refinance karwana hai, koi business ya commercial property buy karni hai, call 732-951-0333 to speak to one of our loan officer for a free consultation. All State Lenders, aapke khwabon ka gullak. Call 732-951-0333 or visit www.aslcmortgage.com.
5: NMLC ID 224649. Equal housing lender.
6: Hey, chagas. My name is Lakhan Sajano ka Sajan. Agar tumko entertainment chahiye, to lagaiye Radio Dhoom aur suniye. Bollywood tamasha, mere Sajan. Hey, Dhoom machate raho. Chagas. Hey.

अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और शशि कपूर जी की बात करें तो उनकी दीवार फिल्म काफी हिट सुपर हिट रही, जिसके डायलॉग आज भी याद हैं, आए तुम साइन करते हो कि ना। और हसीना मान जाएगी 1968 में आई थी, श्रीमान एक श्रीमती 1969 में, कन्यादान, चक्कर पे चक्कर, कालीगटा, विजता, प्यार की जीत, दिल ने पुकारा, त्रिशूल फिल्म उनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, आंधी तूफान, सलाखें, नैना, फांसी, फकीरा, प्रेम कहानी और सत्यम शिवम सुंदरम में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, एक अलग ही तरीके का अभिनय किया था, मज़ा आ गया था। और हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म, रोटी कपड़ा और मकान, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, दीवार 1976 में आई थी, वक्त फिल्म, अभिनेत्री, दो मुसाफिर, तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं शशि कपूर जी ने। और अवार्ड कौन कौन से मिले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो धूम, बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो।

0: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
1: बोल क्या नाम है तेरा?
2: प्राण नाम है मेरा, और अगर आपको एंटरटेनमेंट में प्राण चाहिए तो सुनिए।

0: धूम मचाते रहो।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, अवार्ड गोज टू शशि कपूर।
2: क्या भाई, मजा आ गया भाई। आप सुन रहे हैं जी रेडी धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर की, तो शशि कपूर ने कुल 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला था, जो कि दीवार फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें मिला था। और उधर अगला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें जुनून और कलयुग फिल्म के लिए दिया गया था। इतना ही नहीं, शशि कपूर को साल 2011 में एक अवार्ड मिला था, जिससे उनका नाम दुगना तिगुना चौगुना हो गया था। कौन सा अवार्ड था बताएंगे, लेकिन उससे पहले दीवार फिल्म का गाना सुनेंगे। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो।

0: ना कर पाया तो इतना याद रख जालिम, तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है,

0: जो मुश्किल दौर में भी साथ निभाए उसे आशा कहते हैं, और जो रेडियो धूम पर चलता है उसे बॉलीवुड तमाशा कहते हैं।
1: सफर का ही था मैं सफर कर,
0: सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा रेडियो धूम पर अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो।
2: कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले।
3: इंडिया टॉप टेन हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
4: ओगरू मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी।

0: म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटाक ठोको ताली।
1: వెల్కమ్ టు రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ. ప్రతి శనివారం 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో ధూమ్ మీడియా.com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు. You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday.
2: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को 2 दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
3: NMLC ID 224649 इक्वल हाउसिंग लेंडर।
4: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की, तो शशि कपूर जी ने अवार्ड जीते, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते और साल 2011 में उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया और साल 2015 में इन्हें फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा किया। और पसंद की गई थी सबसे ज्यादा जोड़ी शशि कपूर के साथ वो किसकी थी, अरे भाई किसी एक्ट्रेस की नहीं थी बल्कि एक्टर की थी। कौन थे वो एक्टर बताएंगे आपको थोड़ी देर तक, बस सुनते रहिए आप रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। अरे भैया देख क्या रहे हो, धूम मचाते रहो।

0: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: अरे भाई कोई छोटे मोटे बात नहीं है, हमारे साथ उनके जोड़े को इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया, क्या बताएं कि कितना पसंद किया गया। आप सुन रहे हैं जी रेडी धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, और बात कर रहे हैं शशि कपूर की। और शशि कपूर और किसी एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक्टर की जोड़ी बड़ी सराही गई थी। उनकी जोड़ी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने बहुत पसंद की थी। इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं दीवार, त्रिशूल, सुहाग, शान, नमक हलाल। दीवार फिल्म में शशि कपूर ने अमिताभ के छोटे भाई का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के डायलॉग्स अभी भी लोगों के बीच काफ़ी फेमस है। बाय, तुम इस कागज पर साइन कर दोगे नहीं? सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। हे धूम मचाते रहो।
2: पायल वाली रुक्मही न हो बहुत मगरूर, मूरख है जो चल पड़े अपनी हद से दूर।

मुझ पर तेरे रूप का जादू है बेकार, काम है तेरा नाचना, नाच भरे दरबार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप तो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।

0: हेलो हाय केम ट्रू, मेरा नाम एम ट्रू, आई मीन मैं हूँ आपके आरजे श्री आपके साथ और मैं रहती हूँ आपके कानों के पास रेडियो धूम पर मंडे टू फ्राइडे शाम 4 से 7 करने आपसे ढेर सारी बातें। क्या बात, कैसी बात और किस लिए वाली बात, इन सारे लॉजिक के साथ मिलने वाली हूँ आपको रेडियो धूम पर। तो कान टिका के दिल लगा के सुनते रहो रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: अबे सर केट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
2: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
1: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
2: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई।
3: Here we go. 11:50 a.m. WMNY. New Kensington.
4: Pittsburgh.
5: The time is now 2:00. The current temperature 47.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की, महानायक फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत सी अच्छी फिल्में, बहुत सी अच्छे डायलॉग, बहुत ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी, मतलब कमाल के एक्टर। और शशि कपूर ने 79 एज की आयु में अपनी अंतिम सांस मुंबई में ली और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इस महान कलाकार का निधन 4 दिसंबर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ। वहीं शशि कपूर की डेथ पर फिल्मी जगत ने काफी शोक भी जताया था। और शशि कपूर ना केवल एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। और भी कुछ बातें हैं शशि कपूर के बारे में इंटरेस्टिंग जो बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक, बस आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए रेडियो धूम पर भी जताया था। और शशि कपूर ना केवल एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। और भी कुछ बातें हैं शशि कपूर के बारे में इंटरेस्टिंग जो बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक, बस आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए रेडियो धूम पर। चल रहा है बॉलीवुड तमाशा।

0: रेडियो धूम, रेडियो धूम धूम मचाते रहो, धूम मचाते रहो।
1: प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, और जो भी करो प्रेम से, और आप सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। बॉलीवुड तमाशा और चल रहा है रेडियो धूम पर, आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो।
2: कौन सा साल शशि कपूर के लिए बहुत ही बेहतरीन था बताते हैं आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ ही धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर की, द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और 1965 उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, जिसने उन्हें स्टार से सुपर स्टार बना दिया था। उनकी इसी साल पहली जुबली फिल्म आई थी, जब जब फूल खिले, रिलीज हुई थी। और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली मतलब मल्टी स्टार अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए भी कास्ट किया था। और बॉक्स ऑफिस पर कंटिन्यूअसली दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनका बॉलीवुड में एक नाम बहुत बड़ा बन गया। लेकिन उनके अंदर का अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। कौन सी फिल्में थी बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए। टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप तो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हमें अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।

0: टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: ओ गुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी।

0: तो जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। ओहो मजा आ जाएगा भी। क्यों भाजी ओबरु क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली धूम मचाते रहो।
1: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल है जुगाड़ के लिए, तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे, बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे, एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे, पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
2: NMLC ID 224649। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
3: हमारे दिलों से कभी नहीं रहेंगे दूर, जिनका नाम है शशि कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो, और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की। और शशि कपूर जी ने हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम में एक चॉकलेटी हीरो के रूप में काम किया, मतलब कि अलग अलग तरह के शेड्स में रोल किए हैं और काफी छाए हैं। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी, सत्यम शिवम, सुंदर जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। और साल 1971 की बात करें तो पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के सपने को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर को दोबारा से सजाया, चमकाया, और फिर लोगों ने वहाँ आकर काफ़ी थिएटर देखा और काफ़ी उनको याद भी किया, उनकी फैमिली को। सो इस पूरी फैमिली को सल्यूट है। और शशि कपूर जी जो एक महान एक्टर थे, हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए हमारे बीच में ही रहेंगे। यार आप सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। हाँ

0: आप सुन रहे हो रेडियो धूम, रेडियो धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
1: खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप आरजे राज और बॉलीवुड तमाशा। सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा आरजे राज के साथ रेडियो धूम पर। धूम मचाते रहो है, बच्चे की जान लोगे।
2: अरे भाई, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो अब हम चलते हैं। आए, लेकिन जाने से पहले आपको एक काम करना होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आर चिराज के साथ। नाम तो सुना ही होगा। जाने से पहले बहुत जरूरी काम है जी, हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लॉगिन कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। रेडियो धूम USA के नाम से सर्च करके, और ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी ना भाई। और ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, रेडियो धूम के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो भाई।

आप सुन रहे हैं गरम मसाला, ओनली ऑन रेडियो धूम। यू आर लिसनिंग गरम मसाला, ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम।

क्या बात है जी, आप सुन रहे जी रेडियो धूम गर्मशाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। आजकल तो इंस्टा पे मतलब रेडियो धूम का जो पेज है छाया हुआ है यार, आप भी जरा फॉलो करो पेज को, आपको भी बड़ी अच्छी अच्छी नई नई चीजें पता लगेंगी रेडियो धूम के बारे में। और रेडियो धूम का जो पेज है इंस्टाग्राम पर, वो आपको मिलेगा जी रेडियो धूम यूएसए के नाम से। तो चलो फॉलो कर लो और वहां पर बातें शातें भी करेंगे। ओए होए क्या बात है जी, मैंने कहा जी धूम मचाते रहो।

0: You are listening to Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
1: E4, aapke liye, aapke liye. Aur B4, Bollywood, Bollywood. Ye hai naya panda. Kyunki aapke liye aa raha hai Bollywood Top 20. Bollywood Top 20. Har Saturday, shaam 3 se 5 baje tak. Only on Radio Dhoom.
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक, ओनली ऑन रेडियो धूम।
3: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. We emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। All State Lenders Corp has been satisfying hundreds of customers every year with their mortgage needs. Chahe aap first time home buyer ho ya refinance karwana hai, koi business ya commercial property buy karni hai, call 732-951-0333 to speak to one of our loan officer for a free consultation. All State Lenders, aapke khwabon ka gullak. Call 732-951-0333 or visit www.aslcmortgage.com.
5: NMLC ID 224649. Equal Housing Lender.
6: आप सुन रहे हैं गरम मसाला।
7: गरम मसाला।
6: Only on Radio Dhoom.

लिसनिंग गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, रेडियो धूम मचाते रहो, धूम मचाते रहो।
1: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
2: गरम मसाला
1: ओनली ऑन रेडियो धूम।

ओ भाई, बाकी बातें बाद में, पहले सेहत जरूरी है और सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है जी। तभी तो रेडियो धूम कहता है स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बस तंदुरुस्त बने रहो और धूम मचाते रहो, सुनते रहिए रेडियो धूम। आहो वाह।

0: You are listening Garam Masala.
1: Garam Masala.
0: Only on Radio Dhoom.
1: Radio Dhoom.
2: रात हुई जब शाम के बाद तेरी याद आई हर बात के बाद हमने खामोश रहकर भी देखा फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद
3: Radio Dhoom featuring the evergreen song of Bollywood on cassette classic Monday to Sunday रात 10 से 12 Only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
4: Black coffee आपकी health के लिए healthy ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी है रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया वेल अगर आप ब्लैक कॉफी हर रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है स्पेशली अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जिम से पहले हर रोज ब्लैक कॉफी लें ब्लैक कॉफी आपके शरीर में एनर्जी को बनाए रखती है और इसके साथ साथ जो फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में उन्हें बर्न करने में भी हेल्प करती है जी हाँ गर्ल्स अगर आप फैट जो है अपनी बॉडी से वो कम करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और साथ ही साथ डिप्रेशन से फाइट करने में आपकी मदद करती है कुछ ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के साथ मैं मिलूंगी हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे हर सुबह 7 बजे जहां पर आपकी हेल्थ का रखेंगे ध्यान फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए एंड धूम मचाते रहो
5: गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग हेलो पिट्सबर्ग हेलो पिट्सबर्ग हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो दिस इज आरजे माही फ्रॉम रेडियो धूम
3: सुनना ना भूले हेलो पिट्सबर्ग Monday to Friday, 7 से 10, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
6: Pennsylvanians who work or volunteer with children may need to get their child abuse clearances. If you're not sure, first, go to this website, keepkidssafe.pa.gov. Second, find out if you need clearances. Then, apply online. Getting clearances is easier and less expensive than ever. Pennsylvania means business when it comes to protecting our children. Find out if you need your child abuse clearances at keepkidssafe.pa.gov.
7: Commonwealth of Pennsylvania, Tom Wolf, Governor. Paid for with Pennsylvania taxpayer dollars.
8: ओ भाई क्या बात है आप फेसबुक पर हो अरे हम भी हैं यार हमें भी थोड़ा सर्च कीजिए और लाइक कीजिए है जी मजा आ जाएगा आपको और आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ और फेसबुक पर हम आपको मिलने वाले हैं जी क्या बात है जी रेडियो धूम यूएसए के नाम से फेसबुक पर हमें लाइक करें हमारी फोटोज को देखें अलग अलग इन्फॉर्मेशन को देखें फिल्मी मसालों को देखें मजा आ जाएगा जी सुनते रहिए रेडियो धूम गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ धूम मचाते रहो Yeah.

0: आप सुन रहे हैं गरम मसाला, ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: तेरे तेरे ना तेरे नू तेरे नू।

0: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम। यू आर लिसनिंग गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम,
1: रेडियो धूम।

ऐसी क्या बात है जी, आप सुन रहे हो रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। और हमें सुनने के लिए अपने मोबाइल पे, मोबाइल एंड्रॉइड है चाहे आईफोन है, आप आराम से ना हमें डाउनलोड करो हमारी ऐप को और आराम से सुनो रेडियो धूम गरम मसाला, मजे लो आप जिंदगी के। रेडियो धूम नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करते रहो और सुनते रहो रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। मैंने कहा जी धूम मचाते रहो, वाह।

0: listening to Radio Dhoom, Radio Dhoom, Dhoom मचाते रहो।
1: E4 आपके लिए, आपके लिए और B4 Bollywood, Bollywood। ये है नया फंडा, क्योंकि आपके लिए आ रहा है Bollywood Top 20, Bollywood Top 20 हर Saturday शाम 3 से 5 बजे तक Only on Radio Dhoom।
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ऑनलाइन रेडियो थ्रू मचाते रहो।
3: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. We emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। All State Lenders Corp has been satisfying hundreds of customers every year with their mortgage needs. Chahe aap first time home buyer ho ya refinance karwana hai, koi business ya commercial property buy karni hai, call 732-951-0333 to speak to one of our loan officer for a free consultation. All State Lenders, aapke khwabon ka gullak. Call 732-951-0333 or visit www.aslcmortgage.com
5: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender।
6: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
7: गरम मसाला
6: Only on Radio Dhoom।

0: नहीं है ना, क्या मत कर रहे हो? आप सुन रहे हो रेडियो धूम,
1: रेडियो धूम
0: आइला, धूम मचाते रहो,
1: मचाते रहो।
2: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
1: गरम मसाला
2: ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: आर लिसनिंग गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: रेडियो धूम।
2: रात हुई जब शाम के बाद, तेरी याद आई हर बात के बाद, हमने खामोश रहकर भी देखा, फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद।
3: रेडियो धूम फीचरिंग द एवरग्रीन सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड ऑन कैसेट क्लासिक, मंडे टू संडे रात 10 से 12, ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
4: क्या कहूँ तेरी इन जालिम नजरों के बारे में, दिल कहता है कदमों में कायनात रख दूँ, यूँ तो लिखने को दो चार लाइनें लिख देते हैं लोग, पर आंखें तेरी ऐसी कि पूरी किताब लिख दूँ। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजी श्रेया। वेल, ऐसी ही अमेजिंग वाली शायरी कोई आपके लिए भी बोले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और आपकी आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे। सो गर्ल्स, ऐसे ही अमेजिंग वाले ब्यूटी टिप्स जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। कब? अरे हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
5: Looking to promote a business or a product? How about an event to reach South Asian community in one shot? Contact us sales@dhoommedia.com or call us at 412-455-5700. 412-455-5700. We are just a phone call away.
6: 180 over 111 and I had a stroke. I couldn't speak. I'd walk.
7: 150 over 90, and I had a stroke.
8: This is what high blood pressure sounds like. You might not feel its symptoms, but the results from a stroke are far from silent. Get back on your treatment plan or talk with your doctor to create a plan that works for you. Go to loweryourhbp.org.
9: Head to toe, everything's changed.
8: Brought to you by the American Stroke Association, American Medical Association, and the Ad Council.
10: जी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ, और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हम आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं शो के बाद भी, और हमारी वेबसाइट है वो विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। और मैंने कहा जी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रेडियो धूम से रिलेटेड, मजा आ जाएगा। धूम मचाते रहो, आहो चकते फटे।

सोमवार शक्ति संबंधी वार है और इस वार के स्वामी सोम हैं। सोम के व्रती को उचित है कि वो दिन के तीसरे पहर तक सर्वथा ही निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय आहार करे। इसमें फलाहार आदि का कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथा साध्य सभक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत तीन प्रकार से किया जाता है, एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करें, अथवा प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का व्रत करें। सबकी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वो शिव जी की पूजा करने के पश्चात इस कथा को सुने। सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला उसको कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वो प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वो प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर

करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से न रहा गया और वे शिवजी से बोली, हे शिवजी, यह वैश्य जो प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, तो आप इसके दुख का निवारण क्यों नहीं शीघ्र करते? तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुन शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है, मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहां आता है तथा अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिवजी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो भक्तवत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते, जबकि वो सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है? फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का उन्मूलन क्यों नहीं करते? यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा? हे शिवजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिवजी से ऐसा कहने लगी तो शिवजी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूं। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वो 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कह उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला कि अब तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ और इसे विद्याध्ययन कराओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्ना थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वो काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो

बड़ा रूपवान था तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही तो बात है, विवाह हो जाने के बाद हम इसे वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूं, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख का काना तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुन उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए तथा कन्या को विदा नहीं किया। खाली बारात बिना कन्या के लौट गई। उधर वो वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा कि आज मैं कुछ अस्वस्थ हूं और सोने जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वो अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप ही रहा और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए तब वो खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुन उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए तो सही कि वो क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी उस स्थान पर गए कि जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली, हे महाराज, देखिए तो यह इतना सुंदर वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका और मर गया, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा,
हे देवाधिदेव शिव जी, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वो शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्धान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वो बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंच उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। तो राजा उसे देखने के लिए गया और वहां जा उसने स्वयं अपने जामात्र को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा किया। तब वो वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे लोग घर के थोड़ा निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की सूचना देकर आता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। इधर वो वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जाकर बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूद कर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए, साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधु का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करने तथा शिव जी का विधिवत पूजा वंदना करने लगा। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजन करता है और इस कथा को सुनता है, वह सब कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पाता है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला। म्यूजिकल थेपला हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन

10 इंडिया टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम। आप सुन रहे हैं भक्ति ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: You are listening to Radio Dhoom, Radio Dhoom, Dhoom, machate raho. कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी।

0: भी म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटाक ठोको ताली।
1: मुकम्मल किताब हूँ, तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
2: Hangover, हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।

0: by
1: New Kensington,
0: Pittsburgh.
2: The time is now 6:06.
3: The current temperature
2: 49.
4: You are listening to Radio Doom. Radio Doom. Doom. With Jathi Rao.
5: शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए ताकि सब आत्माएं अपने यहां होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें।

श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान शिव शंकर विराजमान हैं। कई बार भगवान शिव शंकर को यहां आना पड़ा, इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार दी गई है। एक बार भगवान शिव शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती ने दोनों से कहा, तुम दोनों में से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो हमारे पास पहले पहुंचेगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। श्री गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा मुश्किल था। एक तो भारी शरीर, दूसरे सवारी मूषक, लेकिन उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। उन्होंने तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा का उपाय खोज निकाला। उन्होंने माता पिता का पूजन किया और उनकी सात परिक्रमा लगाई। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होती है। स्वामी कार्तिकेय जब वापस लौटे तो श्री गणेश जी का विवाह हो चुका था। ये देखकर वो माता पिता से नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले आए। माता उन्हें मनाने के लिए यहां आईं। पीछे भगवान शिव शंकर भी आए। कार्तिकेय ने भगवान शिव शंकर से शैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित होने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव शंकर ने यहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया। मल्लिका के फूलों द्वारा कार्तिकेय ने पूजा की, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से दैहिक, दैविक एवं भौतिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है। एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं। आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज। सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट। कम ऑन, शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम। एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट, गो फॉर इट। टू लिसन टू योर फेवरेट गाने कीप ट्यून इन टू रेडियो धूम, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
2: मुकम्मल किताब हूँ, तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 Only on Radio Dhoom, Dhoom, मचाते रहो।
3: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग भी तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉप हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com। NMLC ID 224649 Equal Housing Lender।

जय श्री राम। धरती धैर्य धारिणी कहती है, परंतु उसके धैर्य की परीक्षा कुछ कम नहीं ली जाती है। रावण जैसे आतताई शस्य श्यामला को जब रक्त रंजिता करने लगते हैं, तब वसुमती के धैर्य के मोती बिखरने लगते हैं। श्रीहरि भी अत्याचारियों को अत्याचार करने का पूरा अवसर देते हैं, निर्दोषों के वध का कलंक अपने सर कदापि नहीं लेते हैं। पृथ्वी का भार कम करने को, सुर नर मुनि के संकट हरने को कृत संकल्प है नारायण, और उनके संकल्प की पूर्ण रूपेण पुष्टि करती है रामायण।

0: भक्ति ओनली ऑन रेडियो थूम।
1: हाय गुड मॉर्निंग, आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है। एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं। आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज। सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट। कम ऑन शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम। एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट, गो फॉर इट। To listen to your favorite gaane, keep tuned into Radio Dhoom. As always, Dhoom machate raho.
2: Raat hui jab shaam ke baad, teri yaad aayi har baat ke baad. Humne khamosh rehkar bhi dekha, fir bhi teri aawaz aayi har saans ke baad.
0: Radio Dhoom, featuring the evergreen song of Bollywood on Cassette Classic. Monday to Sunday, raat 10 se 12, only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho. Corner Seat, Monday to Thursday, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, only on Radio Dhoom, धूम मचाते रहो।
1: मेरा नाम एम ट्रू, आई मीन मैं हूँ आपके आरजे श्री आपके साथ और मैं रहती हूँ आपके कानों के पास रेडियो धूम पर मंडे टू फ्राइडे शाम 4 से 7 करने आपसे ढेर सारी बातें। क्या बात, कैसी बात और किस लिए वाली बात, इन सारे लॉजिक के साथ मिलने वाली हूँ आपको रेडियो धूम पर। तो कान टिका के दिल लगा के सुनते रहो रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
0: You are listening to Radio Dhoom, Radio Dhoom, Dhoom, Machate Raho.

0: सुन रहे हैं भक्ति ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे जिले के खेड़ गांव सह्याद्री पर्वतमाला के पास भीमा नदी के उद्गम स्थान पर विराजमान है। प्राचीन काल में यहां त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसके अत्याचार से स्वर्ग पाताल मृत्युलोक तीनों ही भयभीत थे। भगवान शिव शंकर ने महाप्रचंड भीमकाय रूप धारण किया और त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया। ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में उस राक्षस का विनाश हुआ। भगवान शिव शंकर भी थक चुके थे, उनके पूरे शरीर से पानी निकल रहा था। वो एक पहाड़ पर विश्राम करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में परिवर्तित हुए। उस पहाड़ को आज भी भीमा शंकर पहाड़ कहते हैं तथा ज्योतिर्लिंग से आज भी पानी निकलता रहता है, जो भीमा नदी के रूप में बहता है। भागीरथी गंगा भगवान शिव शंकर की जटाओं से निकली है, तो भीमा नदी उनके पूरे शरीर से निकलती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव शंकर ने कुंभकर्ण के बेटे भीम असुर का वध किया था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहां आकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।

0: गुड मॉर्निंग, आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है. एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं. आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा. सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज. सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी. इंतजार किसका कर रहे हो, आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट. कम ऑन शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम. एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट, गो फॉर इट. टू लिसन टू योर फेवरेट गाने कीप ट्यून इन टू रेडियो धूम, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो. हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं. सो कर रहे हैं ना कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग. सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम.
1: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम.
0: धूम मचाते रहो, मचाते रहो. हेलो, हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं. सो कर रहे हैं ना कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग. सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम.
1: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम.
0: धूम मचाते रहो, मचाते रहो.
2: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा.
3: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर. भाई बोले तो
2: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो.
3: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई.
4: 11:50 AM. WMNY. New Kensington.
5: Pittsburgh.
6: The time is now 7 o'clock. The current temperature 50.
7: Listen to the music, relax, and have fun.
8: Hi, main Rajpal Yadav.
9: Radio Dhoom.
10: Dhoom, machate raho, machate raho.
11: Listening, Hello Pittsburgh, with RJ Mahi, only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: कदर होती है इंसानों की,
2: कदर होती है इंसानों की
1: जरूरत पड़ने पर,
2: जरूरत पड़ने पर
1: बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं,
2: तिजोरी में रहते हैं।
1: कीप शाइनिंग।

0: मुजफ्फरनगर के पास में एक छोटा सा गांव है बुढ़ाना। आई थिंक खानदान में मैं पहला ही था जो जो ग्रेजुएशन तक पढ़ पाया, वरना कोई पढ़ाई लिखाई का ज्यादा वो नहीं था, सब जमींदारी। उसके बाद मैं जॉब करने लगा बड़ौदा में और चीफ केमिस्ट का जॉब करता था उसे, लेकिन ज्यादा बोर हो गया उससे एक साल के अंदर। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसे जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया मुझे मंडी हाउस में। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया और आई थिंक एक डेढ़ साल उसमें काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। आई थिंक मैंने कई सारे जॉब ट्राई किए थे, चीफ केमिस्ट के अलावा भी काफ़ी जॉब किए थे। तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे एक एहसास इस चीज़ का होता था शायद मैं बोर हो जाऊंगा इस जॉब से, फिर दूसरा ट्राई करता था। फिर तो ये था कि मैं क्या चाह रहा था मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था मैं क्या चाहता हूँ। फाइनली जब मैंने प्ले देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ है जो शायद मैं मुझे जिसकी जबान नहीं मिली थी, वर्ड्स नहीं मिला था कि थिएटर क्या होता, तो शायद ये चीज़ है, बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है और मैं ये करना चाहता था लेकिन मुझे पता नहीं था। तो आई डोंट नो कैसे हुआ या क्या, कभी अनकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठा होगा जो कभी मैंने रियलाइज़ नहीं की इस चीज़ को। तो फाइनली मैंने अब मैं यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला मैं। हाँ, स्ट्रीट प्लेज होते थे दिल्ली में उस वक्त पे, और मैं एक ग्रुप था उसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे कि जैसे लाइट का, बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला उसका, उसके लिए स्किट कर दिया जाके गली गली कुछ कुछ जाके कर रहे थे। तो कोई प्रोडक्ट आया, जैसे ऑयल है, ऑयल कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, अब उसको उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो जगह जगह पे जाके वो परफॉर्म करते थे, उसके बारे में बताते थे, जो आज़ादपुर मंडी हो, ये कनाट प्लेस, बस अड्डा, ये वो हर जगह जाके उसके शोज करते थे। तो उससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। आई थिंक मैं ऑड किस्म के तो नहीं कह सकता, काम थे वो तो, बट ये था कि मैं जब उससे काम ज़्यादा चल नहीं रहा था थिएटर के दौरान, जब मैं ग्रुप में काम कर रहा, जब मैंने बताया था ना जो एमेचर ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त, तो अब हिंदी थिएटर में पैसा तो है नहीं, तो साइड बाय साइड में एक वॉचमैन का काम भी करता था, एक टॉयज़ की फैक्ट्री थी नोएडा में, तब तो नोएडा बिल्कुल वीरान सा लगता था वैसे, तो छोटी छोटी कंपनी खुल गई थी वहाँ पर, वहाँ जाके मैंने किया था, एक डेढ़ साल काम किया वहाँ। ऐसा सही था कि मैं ये सोच रहा था, मैं कोई बड़े बहुत बड़े सपने तो लेके गया नहीं था मैं, पर ये था मैं कि सर्वाइव करता रहूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए इतना डिफिकल्ट हो गया था सर्वाइव करना। तो वहाँ पे एक ही था कि बस सर्वाइवल होता रहे ठीक से, और बाकी काम वाम जो मिलेगा वो तो करते रहेंगे, छोटा मोटा काम, एक सीन दो सीन जो होगा वो करते रहेंगे, क्योंकि बड़ा सीन तो कोई देने वाला नहीं। पहले मैंने टीवी ट्राई किया, टीवी में इतना मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, एक एक दो दो एपिसोड के काम मिले और फिर नहीं भी मिले, और फिर फिल्मों में ट्राई किया, एक एक सीन उसमें मिले, तो बस यही था कि एक एक सीन मिल रहे थे और मेरा काम चल रहा था, और ये सिलसिला कोई 10-11 साल तक चलता रहा होता था एक्चुअली। और रिजेक्शन भी होता, रिजेक्शन तो चलो ये था कि मैं यूज्ड टू हो चुका था इतना सारा, जब क्या होता है कि एक दो बार शुरू में मिलता रिजेक्शन तो आदमी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है आदमी, बट जब बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का मुझे कभी बिल्कुल कई बार आया एहसास इस चीज़ का कि छोड़ के चले जाता हूँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं यही जानता था, इसके अलावा कुछ और जानते थे जिसके मैं अगर छोड़ के चला भी जाता तो क्या करता मैं, या तो वापस वही प्लेस करने पड़ते जिनको मैंने कर लिया था 7-8 साल तक कर लिया था, या तो वही करना पड़ता फिर, या फिर अपने गांव में जाना पड़ता। गांव में बहुत मुश्किल था कि आ गया सिपाही हार के, क्या सोच के आए, तो इस तरह की इन सवालों से बहुत डर लगता था। उन्हें ठीक है जो भी होगा, बुरा भला जो भी होगा यहीं होगा मुंबई में, तो इसलिए वापस नहीं आया।
1: भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिससे लोगों की जान तक जा रही है, तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं। अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है। एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं। आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज। सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट। कम ऑन, शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम। एंड हां, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट। गो फॉर इट। टू लिसन टू योर फेवरेट गाने, कीप ट्यून इन टू रेडियो धूम। एज ऑलवेज, धूम मचाते रहो।
4: कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले।
5: इंडिया टॉप 10, हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
6: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल है जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉप हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
7: NMLC ID 224649, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
8: Listen to the music, relax, and have fun.
9: I'm Udarshan Abul, और आप सुन रहे हैं,
10: Radio Dhoom, Radio Dhoom, Radio Dhoom.
11: Dhoom, मचाते रहो,
12: मचाते रहो.
13: You are listening, Hello Pittsburgh, with RJ Mahi, only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: अब हर सुबह सबके पांव थिरकने लगेंगे जब सुनेंगे तुम मचाने वाले गाने। ओनली ऑन रेडियो 2।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो धूम और मैं हूँ मजनू। उदय भैया कैसे हैं आप? चकास।
2: तू फिर आ गया मजनू, मार खाएगा?
1: मैं मार खाने नहीं, सवाल पूछने आया उदय भैया।
2: पूछ पूछ, आज तू सवाल पूछ और आज तो मैं जवाब देकर ही रहूंगा। उदय कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल।
1: तो बताओ उदय भैया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द में दो होती है और औरत में तीन होती है, बताओ ना।
2: ऐसी कोई चीज नहीं है जो मर्द में दो और औरत में तीन हो। उदय कंट्रोल, कैसे सवाल पूछता है तू?
1: उदय भाई बड़ा सिंपल है, अक्षर वर्ड। मर्द में दो अक्षर होते हैं और औरत में तीन अक्षर। चास।
2: भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा। अच्छा है, अच्छा है। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है। एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं। आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज। सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट। कम ऑन, शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम। एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट, गो फॉर इट। टू लिसन टू योर फेवरेट गाने, कीप ट्यून इन टू रेडियो धूम, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
4: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं क्या आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी,

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: जिंदगी के हर सुबह कुछ सरते लेकर आती है, जिंदगी के हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गुड मॉर्निंग।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ, ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: रात हुई जब शाम के बाद, तेरी याद आई हर बात के बाद, हमने खामोश रहकर भी देखा, फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद।
0: रेडियो धूम फीचरिंग द एवरग्रीन सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड ऑन कैसेट क्लासिक, मंडे टू संडे रात 10 से 12, ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।

0: Bollywood Buzz,
1: Bollywood Buzz,
0: only on Radio Dhoom.
1: Radio Dhoom.
0: धूम मचाते रहो।
2: ब्लैक कॉफी आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी है। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। वेल, अगर आप ब्लैक कॉफी हर रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। स्पेशली अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जिम से पहले हर रोज ब्लैक कॉफी लें। ब्लैक कॉफी आपके शरीर में एनर्जी को बनाए रखती है और इसके साथ साथ जो फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में उन्हें बर्न करने में भी हेल्प करती है। जी हाँ गर्ल्स, अगर आप फैट जो है अपनी बॉडी से वो कम करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक कॉफी जो है वो जरूर लेनी चाहिए। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और साथ ही साथ डिप्रेशन से फाइट करने में आपकी मदद करती है। कुछ ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के साथ मैं मिलूंगी हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे हर सुबह 7 बजे जहां पर आपकी हेल्थ का रखेंगे ध्यान। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए एंड धूम मचाते रहो।
3: हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
4: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
3: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: Listen to the music, relax, and have fun.
6: Hi, this is Umika Chawla. This is Umika Chawla on
0: Radio Dhoom. Radio Dhoom.
1: Radio Dhoom.
0: Dhoom, machate raho.
1: Machate raho.
7: You are listening Hello Pittsburgh with RJ Mahi, only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: हर दिन एक नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। तो करिए शुरुआत गुड मॉर्निंग।

0: बापू ने मम्मी को फोन किया, मेरी मम्मी को नहीं रे, भावना की मम्मी को फोन की, बेल गई, रिंग रिंग, आवाज आई, हेलो हेलो हेलो आंटी भावना है? माँ से जवाब है, हाँ है ना बेटा, पर कोई समझता ही नहीं।
1: लाफ्टर बॉक्स, लाफ्टर बॉक्स।
2: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
3: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
2: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
3: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई।
4: किंग टू प्रमोट ए बिजनेस और ए प्रोडक्ट, हाउ अबाउट एन इवेंट टू रीच साउथ एशियन कम्युनिटी इन वन शॉट? कॉन्टेक्ट अस sales@dhoommedia.com और कॉल अस एट 412-455-5700 412-455-5700। वी आर जस्ट ए फोन कॉल अवे।
5: Knowing your breasts can save your life. Go to knowyourgirls.org for the facts you need on breast health. Brought to you by Susan G. Komen and the Ad Council.
6: Titans, go! When the Teen Titans go to the movies, they know the best way to travel is safely.
7: Hollywood, here we come!
6: To keep your child safe, be sure to use the right car seat for their age and size.
8: Exactly.
7: We're finally on the big screen.
9: Have a seat, my dude.
6: For more information on finding the right seat, visit nhtsa.gov/the right seat.
8: Gotcha. That's a wise move.
6: Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
10: आप सुन रहे हैं हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ, ओनली ऑन रेडियो धूम

0: number one hits music station.
1: रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ, और सुनते रहो रेडियो धूम, धूम बचाते रहो।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: चार्ल्स डार्विन सेड दैट यू इवॉल्व्ड आउट ऑफ अ मंकी, यू आर अ मंकी, देन यू बिकेम अ मैन। द डीएनए डिफरेंस बिटवीन अ चिंपैंजी एंड यू इज ओनली 1.23%। सो इन दैट सेंस physiologically you're only 1.23% away from a chimpanzee. Not a big difference, isn't it? A shade, just a shade of difference. But in terms of intelligence and awareness, you are worlds apart from a chimpanzee. The youth of today should get little more in terms of physical activity, little more into nature, maybe climb a mountain, maybe swim in the lake. How will a young person gain strength, courage, learn to handle many things if you don't do something little unpredictable? Everything is a set track, it's not good.
2: Devi aur sajno, aapke Sunday ka musical safar ho gaya hai aur bhi meetha, kyunki aapke liye आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला। म्यूजिकल थेपला हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम धूम मचाते रहो।
3: हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं। आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज। सो मंडे

0: ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी। इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट। कम ऑन, शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम। एंड हां, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट, गो फॉर इट। टू लिसन टू योर फेवरेट गाने, कीप ट्यून इन टू रेडियो धूम, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
1: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
2: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender।
3: Listen to the music, relax and have fun।
4: Hi, मैं हूँ जस्सी गिल। Hi, मैं हूँ जस्सी गिल। और आप सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं
5: Radio Dhoom, Radio Dhoom, Radio Dhoom। धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
6: You are listening Hello Pittsburgh, Hello Pittsburgh with RJ Mahi only on Radio Dhoom।

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: अच्छी सोच,
2: अच्छा विचार,
1: अच्छी भावना मन को हल्का रखता है।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ, ओनली ऑन रेडियो धूम। वेलकम,
1: वेलकम, वेलकम, वेलकम। ये उदय भाई कैसे हो उदय भाई?
2: मैं अच्छा हूँ जुगनू, आज मेरा दिमाग खराब मत करियो, वैसे ही खराब है, कंट्रोल कंट्रोल।
1: उदय भाई बस एक सवाल का जवाब दो ना।
2: पूछ पूछ, तू हटेगा नहीं, पूछ पूछ। कौन सा सवाल पूछना है?
1: उदय भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें लॉक भी है और की भी है, मतलब कि ताला भी है और चाबी भी है, बताओ ना। ये
2: ऐसी कौन सी सब्जी है? सब्जी में ना ताला होता है ना चाबी होती है, कैसी बात कर रहा है तू जुगनू?
1: मैं बताऊं?
2: बता बता बता उदय कंट्रोल।
1: मैं बताता हूँ, वो सब्जी का नाम है जिसमें ताला भी है और चाबी भी, उस सब्जी का नाम है लौकी। लौकी

0: टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
2: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना तोवी।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ, only on Radio Doom.
1: Hangover, हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11, only on Radio Doom. धूम मचाते रहो.
2: तो जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12. ओहो मजा आ जाएगा भी. क्यों भाजी, ओबरु क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली, धूम मचाते रहो.
3: हेलो जी, हेलो, सलाम आदाब, नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल, और जनाब क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया, जो करती है आपको फुल ऑन एंटरटेन. सो स्वीटहार्ट्स, मैं आपसे मिलने आऊंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को हर सुबह 7 बजे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड ट्रैक्स का सिलसिला कभी नहीं थमता. धूम मचाते रहो.
4: हेलो, हेलो,
5: ओह आप मुझे सुन रहे हैं, दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं. सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग. सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम.
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम.
5: धूम मचाते रहो, मचाते रहो.
6: This is Poonam Jalan.
7: Poonam Jalan.
6: And you're hearing me on Radio Dhoom.
7: Radio Dhoom.
6: Dhoom machate raho.
0: You are listening Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh. With RJ Mahi. Only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है,
2: बड़ी दौलत है।
1: संतोष सबसे बड़ा खजाना है,
2: बड़ा खजाना है।
1: और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है,
2: बड़ा मित्र है।
1: गुड मॉर्निंग।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माई के साथ ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मुझे सब बोलते थे यार इसको सिर्फ एक्शन ही आता है, ही जस्ट नोज एक्शन। आई ऑलवेज थिंक अ चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ। एवरी टाइम एनीबडी ट्राइज टू पुट एन इमेज ऑन मी, आई हैव ऑलवेज जंप टू सम अदर इमेज।
2: टू बी ऑनेस्ट, आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ। Being yourself, that is an extraordinary thing.
3: जहां लोग दौड़ रहे हैं ना वहां अपना दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए। अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा।
2: करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग।
1: जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक कैसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा।
2: माय रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है एक घंटे का, 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूँगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे एक घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। उसके बाद 5:15 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ, 2 घंटे मुझे

0: आपने कसरत के लिए चाहिए?
1: I work 8 hours a day. 8 hours is good enough. But in that 8 hours, I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. I sleep every day at around 9, 9:30. हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है. आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए. 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है. आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना. देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी. सिंपल थिंग है, सिंपल. दिस इज ऑल इन योर हैंड्स. योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स. योर लाइफ इज इन योर हैंड्स. इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग. We make it very complicated.
2: दवी और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला. म्यूजिकल थेपला हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम. रेडियो धूम मचाते रहो.
3: गुड मॉर्निंग. आई होप आपकी मॉर्निंग हो चुकी है. एंड चलो अभी नींद खोलने वाला काम करते हैं. आई एम सो श्योर कल भी सोचा होगा ना आपने कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, कल से ही काम शुरू कर ही दूंगा. सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई यार, नींद भी खुल गई और वो कल आ चुका है आज. सो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करते हुए दिन आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी जो बकेट लिस्ट है वो भी आगे बढ़ती जाएगी. इंतजार किसका कर रहे हो? आपकी बकेट लिस्ट है, यू नीड टू फुलफिल इट. कम ऑन शुरू करते हैं आज से इस बकेट लिस्ट का नंबर 1, 2, 3, 4 वाला काम. एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट यार, आई नो यू कैन डू इट. Go for it. To listen to your favorite gaane, keep tuned into Radio Dhoom. As always, Dhoom machate raho.
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए. तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे. बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे. एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे. पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे. पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू. ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक. कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com.
5: NMLC ID 224649. Equal housing lender.
6: Hi. Listen to the music, relax, and have fun.
7: Hi, main hoon Koena Mitra.
2: Radio Dhoom. Radio Dhoom. Radio Dhoom. Dhoom machate raho. Machate raho.
8: You are listening Hello Pittsburgh with RJ Mahi. Only on Radio 2.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: हर सुबह गर्मा गर्म चाय हाथों में और कानों में धूम मचाने वाले गाने ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: उदय भाई, उदय भाई, मैं आ गया।
2: आ गया फिर से मजनू। सवाल पूछेगा दिमाग खाएगा, उदय कंट्रोल कंट्रोल। चल पूछ पूछ सवाल पूछ।
1: उदय भाई आज का सवाल बिल्कुल सिंपल है, खास। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा फोन है जिसे हम डायल नहीं कर सकते, बोलो ना।
2: ऐसा कौन सा फोन है जिसे हम डायल नहीं कर सकते? मुझे नहीं मालूम, तू बता उदय कंट्रोल।
1: उदय भाई वेरी सिंपल, हेडफोन। झगास,
2: मार खाएगा, भाग जा यहाँ से, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। सुनते रहिए रेडियो धूम, उदय और मजनू धूम मचाते रहो। अच्छा है, अच्छा है।
3: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं क्या आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूं, तेरा ही अल्फाज हूं, अधूरा सा ख्वाब हूं पर लाजवाब हूं। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
4: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी।

0: ऑन रेडियो धूम, रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटाक ठोको ताली।
1: रात हुई जब शाम के बाद, तेरी याद आई हर बात के बाद, हमने खामोश रहकर भी देखा, फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद।
2: रेडियो धूम फीचरिंग द एवरग्रीन सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड ऑन कैसेट क्लासिक, मंडे टू संडे रात 10 से 12 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
3: Listen to the music, relax and have fun.
4: Hi, this is Babu Supriyo and you're listening to me on
2: Radio Dhoom. Radio Dhoom. Radio Dhoom. Dhoom machate raho. Machate raho.
5: You are listening Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh with RJ Mahi only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: कदर होती है इंसानों की,
2: कदर होती है इंसानों की,
1: जरूरत।

0: हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, आरजे माइक के साथ, only on Radio Boom. कॉर्नर सीट मंडे टू थर्सडे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो. बॉलीवुड बज ओनली ऑन रेडियो धूम धूम मचाते रहो.
1: क्या कहूँ तेरी इन जालिम नजरों के बारे में, दिल कहता है कदमों में कायनात रख दूँ. यूँ तो लिखने को 2-4 लाइनें लिख देते हैं लोग, पर आंखें तेरी ऐसी कि पूरी किताब लिख दूँ. रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया. वेल, ऐसी ही अमेजिंग वाली शायरी कोई आपके लिए भी बोले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और आपकी आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे. सो गर्ल्स, ऐसे ही अमेजिंग वाले ब्यूटी टिप्स जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ. कब? अरे हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे. सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो.
2: हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं. सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग. सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम.
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम.
2: धूम मचाते रहो, मचाते रहो.
3: Listen to the music, relax, and have fun.
4: Hi, मैं हूँ अभिजीत सावंत.
5: अभिजीत सावंत और आप सुन रहे हैं
4: और आप सुन रहे हैं
0: रेडियो धूम, रेडियो धूम, रेडियो धूम. धूम मचाते रहो, मचाते रहो. You are listening Hello Pittsburgh, Hello Pittsburgh with RJ Mahi only on Radio Dhoom.

0: नंबर वन हिट्स म्यूजिक स्टेशन।
1: अब हर सुबह सबके पांव थिरकने लगेंगे जब सुनेंगे धूम मचाने वाले गाने। ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: साल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
1: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender।
2: You are listening Garam Masala।
3: Garam Masala।
2: Only on Radio Dhoom।
3: Radio Dhoom।

जी क्या बात है जी, आप सुन रहे जी रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। आजकल तो इंस्टा पे मतलब रेडियो धूम का जो पेज है छाया हुआ है यार, आप भी जरा फॉलो करो पेज को, आपको भी बड़ी अच्छी अच्छी नई नई चीजें पता लगेंगी रेडियो धूम के बारे में। और रेडियो धूम का जो पेज है इंस्टाग्राम पर वो आपको मिलेगा जी रेडियो धूम यूएसए के नाम से, तो चलो फॉलो कर लो और वहां पर बातें शातें भी करेंगे। ओए होए क्या बात है जी, मैंने कहा जी धूम मचाते रहो।

0: सुनते रहो।
1: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. They emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
2: तो जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। ओहो मजा आ जाएगा भी। क्यों भाजी ओबरू क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली धूम मचाते रहो।
3: कॉर्नर सीट Monday to Thursday, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक, only on Radio Dhoom, धूम मचाते रहो। Bollywood Buzz, only on Radio Dhoom, धूम मचाते रहो।
4: आप सुन रहे हैं गरम मसाला। Only on Radio Dhoom.

आर लिसनिंग गरम मसाला, गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम।

बोले सुबह श्याम, ट्यून ऑन रेडियो धूम। ये दैट्स राइट, 1150 AM रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।

0: खबर के बारे में कब, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे मैं मिलूंगी आपको ओनली ऑन रेडियो धूम। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, धूम मचाते रहो।
1: हेलो, ओह आप मुझे सुन रहे हैं, दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
2: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
1: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
3: Everybody buckle up. Bum, bum, bum, bum, bum. Buckle up.
4: Let's go.
3: Buckle up.
4: Can we go to the store?
3: Come on, buckle
4: can we get
3: up.
4: Some ice cream?
3: Everybody, buckle up.
5: A lot goes on in the car, but you're in control. So only move when you hear the click that says they're buckled in. Never give up until they buckle up. Learn more at safercar.gov/kidsbuckleup. A message from the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
6: I'm probably okay to have one more drink before I drive home. I'm probably okay. I open the window to stay alert. Probably okay. I just popped some gum in my mouth.
7: Step out of the car, please.
6: I probably made a mistake.
8: Probably okay isn't okay when it comes to drinking and driving. If you see a warning sign, stop and call a cab, a car, or a friend. Buzzed driving is drunk driving. A message brought to you by NHTSA and the Ad Council.
9: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
10: गरम मसाला,
9: only on Radio Dhoom.

0: आर लिसनिंग गरम मसाला, गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम, रेडियो धूम।
1: व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ न्यू पेयर ऑफ ब्लू जीन्स।
2: व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ किड्स फर्स्ट कंप्यूटर।
1: व्हेन आई ग्रो अप आई डोंट वांट टू बी अ पीस ऑफ गार्बेज एंड इफ यू रिसाइकल मी आई वोंट बी।
3: गिव योर गार्बेज अनदर लाइफ, रिसाइकल। लर्न हाउ एट iwanttobe.recycled.org। Brought to you by Keep America Beautiful and the Ad Council.
4: ओ भाई क्या बात है, फेसबुक पर हो? अरे हम भी हैं यार, हमें भी थोड़ा सर्च कीजिए और लाइक कीजिए, है जी, मजा आ जाएगा आपको। और आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ, और फेसबुक पर हम आपको मिलने वाले हैं जी। क्या बात है जी, रेडियो धूम यूएसए के नाम से फेसबुक पर हमें लाइक करें, हमारी फोटोज को देखें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को देखें, फिल्मी मसालों को देखें, मजा आ जाएगा जी। सुनते रहिए रेडियो धूम गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ, धूम मचाते रहो।

0: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ

0: अच्छी तरह से धुले। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है, तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: इंडिया टॉप 10, इंडिया टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: You are listening Garam Masala.
4: Garam Masala.
3: Only on Radio Dhoom.
4: Radio Dhoom.

सही क्या बात है जी, आप सुन रहे हो रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। और हमें सुनने के लिए अपने मोबाइल पे, मोबाइल एंड्रॉइड है चाहे आईफोन है, आप आराम से ना हमें डाउनलोड करो हमारी ऐप को और आराम से सुनो रेडियो धूम गरम मसाला। मजे लो आप जिंदगी के। रेडियो धूम नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करते रहो और सुनते रहो रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। मैंने कहा जी धूम मचाते रहो।

0: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
1: मुकम्मल किताब हूँ, तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ, पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: ओगरू मेरी किसी गलते नाराज ना होवी, अखिया नू हंजुआ नाल ना धोवी, मिलदी है खुशी तेनू हसदे देख के, सानू मौत भी आ जावे तां वी ना रोवी। मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी म्यूजिकल शो।

0: You are listening to Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
1: तो जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। ओहो मजा आ जाएगा भी। क्यों भाजी?
2: ओबरू क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली, धूम मचाते रहो।
3: मेरा नाम आपके मैं आपके शाम 4 से 7 करने आपसे ढेर सारी बातें। क्या बात, कैसी बात और किस लिए वाली बात, इन सारे लॉजिक के साथ मिलने वाली हूँ आपको रेडियो धूम पर। तो कान टिका के दिल लगा के सुनते रहो रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
4: हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 4122265500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
4: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
6: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें, तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
5: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
6: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई।
7: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
8: गरम मसाला
7: ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: आर लिसनिंग गरम मसाला, गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो
1: You have the swag. Want to rock the Pittsburgh? Want to be an RJ? Be a shining star with Radio Dhoom. You can contact us info@dhoommedia.com or you can give us a call at 412-455-5700 or log on to www.dhoommedia.com.
2: Bhakti ek samarpan bhav hai. Bhakti ek विश्वास है, भक्ति एक आध्यात्मिक चेतना है, भक्ति एक सरल मार्ग है। सुनिए भक्ति रोज सुबह 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम।
3: Knowing your breasts can save your life. Go to knowyourgirls.org for the facts you need on breast health. Brought to you by Susan G. Komen and the Ad Council.
4: When I was little, I didn't talk for a long time. I was sensitive to lights and sounds, so I'd build secret hiding places where they couldn't get in. Sometimes, I'd do the same things over and over, until one day, I found out I had autism. My family got me help. Slowly, I learned how to live with it better.
5: Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks.org/signs. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
6: जी आप सुन रहे हो जी रेडियो धूम गरम मसाला अपने शेफ कपिल वर्मा के साथ। और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हम आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं शो के बाद भी, और हमारी वेबसाइट है वो विजिट जरूर कीजिए। टाइप कीजिए www.dhoommedia.com और मैंने कहा जी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी रेडियो धूम से रिलेटेड, मजा आ जाएगा। धूम मचाते रहो, आहो चकदे फटे।

0: आप सुन रहे हैं गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: दही और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला।
3: म्यूजिकल थेपला
2: हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम।
3: रेडियो धूम,
2: धूम मचाते रहो।
4: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक

0: आर लिसनिंग गरम मसाला, गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो
1: धूम कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूं, तेरा ही अल्फाज हूं, अधूरा सा ख्वाब हूं पर लाजवाब हूं। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
2: कॉर्नर सीट मंडे टू थर्सडे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
3: बॉलीवुड बज, बॉलीवुड बज ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम मचाते रहो।
0: आप सुन रहे हैं गरम मसाला, गरम मसाला ओनली ऑन रेडियो धूम।

ओ भाई, बाकी बातें बाद में, पहले सेहत जरूरी है और सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है जी। तभी तो रेडियो धूम कहता है स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बस तंदुरुस्त बने रहो और धूम मचाते रहो, सुनते रहिए रेडियो धूम। आहो वाह।

0: सुन रहे हैं गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: ब्लैक कॉफी आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी है। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। वेल, अगर आप ब्लैक कॉफी हर रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। स्पेशली अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जिम से पहले हर रोज ब्लैक कॉफी लें। ब्लैक कॉफी आपके शरीर में एनर्जी को बनाए रखती है और इसके साथ साथ जो फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में उन्हें बर्न करने में भी हेल्प करती है। जी हाँ गर्ल्स, अगर आप फैट जो है अपनी बॉडी से वो कम करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक कॉफी जो है वो जरूर लेनी चाहिए। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और साथ ही साथ डिप्रेशन से फाइट करने में आपकी मदद करती है। कुछ ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के साथ मैं मिलूंगी हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे हर सुबह 7 बजे जहां पर आपकी हेल्थ का रखेंगे ध्यान। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए एंड धूम मचाते रहो।
3: हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
4: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
3: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: Good morning, Pittsburgh. Good morning, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. This is RJ Mahi. This is RJ Mahi. From Radio Dhoom. Radio Dhoom.
6: Suna na bole. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Monday to Friday, 7 se 10. Only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
7: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
8: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
7: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
8: भाई बिल्कुल सही बोले भाई।
0: यू आर लिसनिंग गरम मसाला,
1: गरम मसाला
0: ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: Kensington.
1: Pittsburgh.
2: The time is now 1:03.
3: The current temperature 68.
4: आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है भाई? मेरे पास शशि कपूर है भाई, जो हमें काफी एंटरटेन करते रहे भाई। आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आर जिलाज के साथ, और आज वाकई जिनकी हम बात करने वाले हैं उनका नाम है शशि कपूर। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम तक उसे पहुंचाने में कपूर खानदान का काफी योगदान रहा है, और कपूर खानदान ने बॉलीवुड को ना सिर्फ कई बेहतरीन फिल्म्स दी हैं बल्कि कई सुपरस्टार एक्टर भी इस इंडस्ट्री को दिए हैं। वहीं कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले शशि कपूर का नाम भी बॉलीवुड के उन महान अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय के जरिए काफी लोगों का दिल भी जीता है। और शशि कपूर जी के बारे में आज के शो में बात होगी, तो बस सुनते रहिए रेडियो धूम। अब बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो।

0: है तेरा?
1: प्राण नाम है मेरा, और अगर आपको एंटरटेनमेंट में प्राण चाहिए तो सुनिए बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ।
0: बोल क्या नाम है तेरा?
1: सिर्फ रेडियो धूम पर धूम मचाते रहो।
2: दवी और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला।
3: म्यूजिकल थेपला
2: हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम।
3: रेडियो धूम,
2: धूम मचाते रहो।
4: कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले।
5: इंडिया टॉप 10,
6: इंडिया टॉप 10
5: हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
7: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल है जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग 3 तो थोड़ा

0: आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू. ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. ऑल स्टेट लेंडर्स, आपके ख्वाबों का गुल्लक. कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com.
1: NMLC ID224649. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
2: जो मुश्किल दौर में भी साथ निभाए उसे आशा कहते हैं, और जो रेडियो धूम पर चलता है उसे बॉलीवुड तमाशा कहते हैं.
3: सफर का ही था मैं सफर कर.
2: हाँ, सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा रेडियो धूम पर अपने आरजे राज के साथ. धूम मचाते रहो. हाँ,
4: और भाई क्या बात है भाई. शशि कपूर जी की बात चल रही है, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ. धूम मचाते रहो. और बात कर रहे हैं शशि कपूर की. सो शशि कपूर ने कई सारी हिंदी फिल्म्स में काम किया है, साथ ही कई फिल्मों का डायरेक्शन भी इस महानायक ने किया है. आज हम आपको शशि कपूर के जीवन के बारे में बता रहे हैं. तो बलबीर राज कपूर यानी कि शशि कपूर का जन्म पृथ्वीराज कपूर के यहाँ हुआ था. कोलकाता में जन्मे बलबीर राज कपूर को उनके परिवार के लोग प्यार से शशि बुलाया करते थे, और शशि कपूर से बड़े उनके दो भाई थे जो कि अभिनेता राज कपूर और शम्मी कपूर थे. और शशि कपूर के फैमिली के लगभग सारे मेंबर फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे. और भी काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं शशि कपूर के बारे में. बस आप सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ. धूम मचाते रहो.

0: धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
1: हुस्न जब जब

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप तो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।
1: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड तमाशा विद आरजे राज, राज ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूं, तेरा ही अल्फाज हूं, अधूरा सा ख्वाब हूं पर जवाब हूं। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
3: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. They emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
4: Hangover हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
5: यू आर लिसनिंग टू रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
0: बाय, तुम साइन कर दोगे ना? हाँ जी, आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ। और अपनी फिल्मों के बारे में नहीं, अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए भी काफी मशहूर थे शशि कपूर। और शशि कपूर की बात आज हम कर रहे हैं। तो शशि कपूर की अगर बात की जाए तो उनकी मुलाकात अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल से इस साल 1956 में, यानी कि 1956 में कोलकाता के एक थिएटर में हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने जुलाई 1958 में मुंबई में भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली। वहीं जेनिफर का जो निधन था साल 1984 में कैंसर से हुआ। और वाइफ की डेथ के बाद शशि कपूर एकदम अकेले हो गए और उन्होंने फिल्मी जगत से बहुत दूरी बना ली थी। और शशि और जेनिफर के 3 बच्चे हैं जिनके नाम कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर है। और शशि कपूर के फिल्मी करियर के बारे में भी बात करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: You are listening to Radio Dhoom, Radio Dhoom, Dhoom मचाते रहो।
1: वेल, क्या आपको अंटार्कटिका डेजर्ट की सबसे खास बात पता है? नहीं पता? अरे मैं बताती हूँ ना यार, रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। अंटार्कटिका डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसने की लगभग 5.5 मिलियन की जो मील्स हैं वो घेर कर रखी हुई हैं। जी हाँ, ऐसी ही और अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए रेडियो धूम पर मेरे साथ। कब? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे को मैं मिलूंगी आपको सुबह 7 बजे, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और बातें, साथ ही साथ आप इंजॉय करेंगे अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स। सो स्वीटहार्ट्स, इंतजार रहेगा मुझे आपका। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: हेलो हेलो,
3: ओ, आप मुझे सुन रहे हैं?
2: That's great यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
2: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
4: गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग, गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग। हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, दिस इज आरजे माही, दिस इज आरजे माही फ्रॉम रेडियो धूम, रेडियो धूम।
0: सुनना ना भूले, हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, मंडे टू फ्राइडे 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
5: King to promote a business or a product, how about an event to reach South Asian community in one shot? Contact us sales@dhoommedia.com or call us at 412-455-5700, 412-455-5700. We are just a phone call away.
6: आओ सुनो, दुनिया का लोगो सबसे बड़ा है बॉलीवुड तमाशा का शो जो चलता है रेडियो धूम में आरजे राज के साथ।

0: बजाते रहो ना, आओ।
1: अरे आज जिनकी बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक हैं, उनका नाम है शशि कपूर। शशि नहीं, शशि।
2: हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ। और शशि कपूर बहुत ही कमाल के एक्टर और इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी की, मजा आता है उनकी डायलॉग डिलीवरी सुन के। और बचपन से ही शशि कपूर को एक्टिंग में काफ़ी शौक था, क्योंकि ऑलरेडी पूरी फैमिली ताल्लुक रखती थी एक्टिंग से। सो उनका ये शौक आगे बढ़कर उनका करियर बन गया। शशि कपूर ने 1940 में फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इस महान अभिनेता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 4 फिल्मों में काम किया है। अपनी लाइफ के दौरान शशि कपूर ने कुल 160 फिल्मों में कार्य किया, जिसमें से 12 फिल्में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी में की हैं। क्या बात है भाई, कमाल कर दिया। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आर चिराज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप दो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।
1: भक्ति एक समर्पण भाव है, भक्ति एक विश्वास है, भक्ति एक आध्यात्मिक चेतना है, भक्ति एक सरल मार्ग है। सुनिए भक्ति रोज सुबह 5 से 7 only on Radio Tune.
2: What should I wear?
3: Should I take the highway or go through town?
2: Do I pick up the kids early today?
4: The average adult makes thousands of decisions a day. Most are small, but some could be life-changing. Before you get behind the wheel, impaired by drugs or alcohol, make the right decision. Decide to call a friend. Decide to call a cab. Decide to download a rideshare app. But don't decide to drive. For more information, visit PennDOT.gov/safety. Paid for with Pennsylvania taxpayer dollars.
0: आ, ये कुंग फू कराटे, ये क्या हो रहा है? रेडियो धूम लगा के एंटरटेनमेंट चाहिए तो सुनते रहो रेडियो धूम।
5: गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है, क्या क्या है, क्या इरादा तेरा?
0: बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, आइए धूम मचाते रहो।

0: Kensington,
1: Pittsburgh.
2: The time is now 2:01.
3: The current temperature 71.
4: अरावाई शशि कपूर की फिल्मों के नाम भी तो बताइए जो काफी ज्यादा चर्चित थी। हाँ हाँ जी वही बता रहे हैं जी। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और शशि कपूर जी की बात करें तो उनकी दीवार फिल्म काफी हिट सुपर हिट रही, जिसके डायलॉग आज भी याद हैं। आए तुम साइन करते हो कि ना आए। और हसीना मान जाएगी 1968 में आई थी, श्रीमान एक श्रीमती 1969 में, कन्यादान, चक्कर पे चक्कर, काली घटा, विजेता, प्यार की जीत, दिल ने पुकारा, त्रिशूल फिल्म उनकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, आंधी तूफान, सलाखें, नैना, फांसी, फकीरा, प्रेम कहानी और सत्यम शिवम सुंदरम में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। एक अलग ही तरीके का अभिनय किया था, मज़ा आ गया था। और हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म, रोटी कपड़ा और मकान, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, दीवार 1976 में आई थी, वक्त फिल्म, अभिनेत्री, दो मुसाफिर। तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं शशि कपूर जी ने, और अवार्ड कौन कौन से मिले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो।

और आप सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। बॉलीवुड तमाशा और चल रहा है रेडियो धूम पर आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो।

0: all the hits. One station.
1: Music that never stops. Stop. Only on.
2: Only on.
1: Radio Doom.
2: Radio Doom.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा

0: सकता। सावधानी ही बचाव है, तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, Only on Radio Dhoom. Dhoom. मचाते रहो।
2: आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है?
3: बाय, मेरे पास रेडियो धूम है।
2: और बॉलीवुड तमाशा है और आरजे राज है जो धूम मचाते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। धूम मचाते रहो।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, अवार्ड गोज टू शशि कपूर।
3: क्या भाई, मजा आ गया भाई। आप सुन रहे हैं जी रेडी धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर की, तो शशि कपूर ने कुल 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला था, जो कि दीवार फिल्म में उनके किरदार के लिए उन्हें मिला था। और उधर अगला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें जुनून और कलयुग फिल्म के लिए दिया गया था। इतना ही नहीं, शशि कपूर को साल 2011 में एक अवार्ड मिला था जिससे उनका नाम दुगना तिगुना चौगुना हो गया था। कौन सा अवार्ड था बताएंगे, लेकिन उससे पहले दीवार फिल्म का गाना सुनेंगे। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो।

0: कर पाया तो इतना याद रख जालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है।

अच्छा है ये देखिए बॉलीवुड तमाशा, ये रेडियो धुन, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो धुन पर बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ।

0: रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम खटाक ठोको ताली।
1: Welcome to Radio Dhoom USA. ప్రతి శనివారం 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో dhoommedia.com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు. You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday.
0: जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। ओहो मजा आ जाएगा भी, क्यों भाजी ओगरु क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम खटाक ठोको ताली। धूम मचाते रहो।
2: क्या कहूँ तेरी इन जालिम नजरों के बारे में, दिल कहता है कदमों में कायनात रख दूँ, यूँ तो लिखने को 2-4 लाइनें लिख देते हैं लोग, पर आंखें तेरी ऐसी कि पूरी किताब लिख दूँ। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। वेल, ऐसी ही अमेजिंग वाली शायरी कोई आपके लिए भी बोले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और आपकी आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे। सो गर्ल्स, ऐसे ही अमेजिंग वाले ब्यूटी टिप्स जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। कब? अरे हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो, और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की। तो शशि कपूर जी ने अवार्ड जीते, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते, और साल 2011 में उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, और साल 2015 में इन्हें फिल्मी इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा किया। और पसंद की गई थी सबसे ज्यादा जोड़ी शशि कपूर के साथ, वो किसकी थी? अरे भाई, किसी एक्ट्रेस की नहीं थी बल्कि एक्टर की थी। कौन थे वो एक्टर बताएंगे आपको थोड़ी देर तक, बस सुनते रहिए आप रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। अरे भैया देख क्या रहे हो, धूम मचाते रहो।

और बॉलीवुड तमाशा। सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा आरजे राज के साथ रेडियो धूम पर। धूम मचाते रहो है बच्चे की जान लोगे।

0: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
1: हेलो, हेलो। ओह, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
2: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
0: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
3: Good morning, Pittsburgh. Good morning, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. This is RJ Mahi. This is RJ Mahi. From Radio Dhoom. Radio Dhoom.
4: Sunna na bhule. Hello, Pittsburgh. Hello, Pittsburgh. Monday to Friday, 7 se 10. Only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
5: Do you have the swag? Want to rock the Pittsburgh? Want to be an RJ? Be a shining star with Radio Dhoom. You can contact us info@dhoommedia.com or you can give us a call at 412-455-5700 or log on to www.dhoommedia.com.
6: Looking to promote a business or a product? How about an event to reach South Asian community in one shot? Contact us sales@dhoommedia.com or call us at 412-455-5700. 412-455-5700. We are just a phone call away.
7: अरे भाई, कोई छोटे मोटे बात नहीं है। हमारे साथ उनके जोड़े को इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया, क्या बताएं कि कितना पसंद किया गया। आप सुन रहे हैं जी रेडी धूम, बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, और बात कर रहे हैं शशि कपूर की। और शशि कपूर और किसी एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि एक्टर की जोड़ी बड़ी सराही गई थी। उनकी जोड़ी महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने बहुत पसंद की थी। इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं दीवार, त्रिशूल, सुहाग, शान, नमकहलाल। दीवार फिल्म में शशि कपूर ने अमिताभ के छोटे भाई का किरदार निभाया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म के डायलॉग्स अभी भी लोगों के बीच काफ़ी फेमस है। बाय, तुम इस कागज पर साइन कर दोगे? नहीं। सुनते रहिए रेडियो धूम, बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। हे धूम मचाते रहो।
8: पायल वाली रुक्मही नहु बहुत मगरूर, मूरख है जो चल पड़े अपनी हद से दूर।

मुझ पर तेरे रूप का जादू है बेकार, काम है तेरा नाचना, नाच भरे दरबार।

0: Edmonton.
1: Pittsburgh.
2: The time is now 3:01.
3: The current temperature 72.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की, महानायक फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत सी अच्छी फिल्में, बहुत सी अच्छे डायलॉग, बहुत ही अच्छी डायलॉग डिलीवरी, मतलब कमाल के एक्टर। और शशि कपूर ने 79 एज की आयु में अपनी अंतिम सांस मुंबई में ली और लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस महान कलाकार का निधन 4 दिसंबर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ। वहीं शशि कपूर की डेथ पर फिल्मी जगत ने काफी शोक भी जताया था। और शशि कपूर ना केवल एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। और भी कुछ बातें हैं शशि कपूर के बारे में इंटरेस्टिंग जो बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक, बस आप सुनते रहिए, जुड़े रहिए। रेडियो धूम पर चल रहा है बॉलीवुड तमाशा, धूम मचाते रहो।

0: only on Radio Doom. आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: आपके लिए और बी फॉर बॉलीवुड।

आ रहा है बॉलीवुड टॉप 20, बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन रेडियो 2।

0: टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉर्प हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
2: NMLC ID 224649। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
3: क्या नाम है तेरा?
4: प्राण नाम है मेरा। और अगर आपको एंटरटेनमेंट में प्राण चाहिए तो सुनिए बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ,
3: बोल क्या नाम है तेरा?
4: सिर्फ रेडियो धूम पर धूम मचाते रहो।
5: कौन सा साल शशि कपूर के लिए बहुत ही बेहतरीन था बताते हैं आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ ही धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर की, द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और 1965 उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था, एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में जिसने उन्हें स्टार से सुपर स्टार बना दिया था। उनकी इसी साल पहली जुबली फिल्म आई थी, जब जब फूल खिले, रिलीज हुई थी। और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली मतलब मल्टी स्टार अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए भी कास्ट किया था। और बॉक्स ऑफिस पर कंटिन्यूअसली दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनका बॉलीवुड में एक नाम बहुत बड़ा बन गया। लेकिन उनके अंदर का अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की। कौन सी फिल्में थी बताऊंगा आपको थोड़ी देर तक। सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो और अब हमारी वेबसाइट पर लॉगिन जरूर कीजिए, विजिट जरूर कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम आपको मिलेंगे रेडियो धूम USA के नाम से। और ऐप दो डाउनलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐप डाउनलोड करेंगे तभी तो हम अच्छे से सुन पाएंगे ना। तो ऐप है हमारी रेडियो धूम के नाम से, चाहे एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा। हाँ, धूम मचाते रहो।

0: जो मुश्किल दौर में भी साथ निभाए उसे आशा कहते हैं, और जो रेडियो धूम पर चलता है उसे बॉलीवुड तमाशा कहते हैं।
1: सफर का ही था मैं सफर कर,
0: हाँ सुनते रहिए बॉलीवुड तमाशा रेडियो धूम पर अपने आरजे राज के साथ, धूम मचाते रहो। हाँ
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूँ तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
3: ओगरू मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी। मिलदी है खुशी तेनू हसदे देख के, सानू मौत भी आ जावे तां वी ना रोवी। मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटैक ठोको ताली।
4: रात हुई जब शाम के बाद, तेरी याद आई हर बात के बाद। हमने खामोश रहकर भी देखा, फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद।
2: रेडियो धूम फीचरिंग द एवरग्रीन सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड ऑन कैसेट क्लासिक, मंडे टू संडे रात 10 से 12 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
4: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो,
5: धूम मचाते रहो।
0: हमारे दिलों से कभी नहीं रहेंगे दूर, जिनका नाम है शशि कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। और बात कर रहे हैं शशि कपूर जी की, और शशि कपूर जी ने हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम में एक चॉकलेटी हीरो के रूप में काम किया, मतलब कि अलग अलग तरह की शेड्स में रोल किए हैं और काफी छाए हैं। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी, दूसरा आदमी, सत्यम शिवम, सुंदर जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। और साल 1971 की बात करें तो पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के सपने को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर को दोबारा से सजाया, चमकाया, और फिर लोगों ने वहाँ आकर काफ़ी थिएटर देखा और काफ़ी उनको याद भी किया, उनकी फैमिली को। सो इस पूरी फैमिली को सल्यूट है। और शशि कपूर जी जो एक महान एक्टर थे, हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए हमारे बीच में ही रहेंगे। यार आप सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा, अपने आरजे राज के साथ धूम मचाते रहो। हाँ

हैंगओवर हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।

0: Bollywood Buzz, Bollywood Buzz, only on Radio Dhoom. Radio Dhoom. मचाते रहो।
1: हेलो जी, हेलो, सलाम, आदाब, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, और जनाब क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया, जो करती है आपको फुल ऑन एंटरटेन। सो स्वीटहार्ट्स, मैं आपसे मिलने आऊंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को हर सुबह 7 बजे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड ट्रैक्स का सिलसिला कभी नहीं थमता। धूम मचाते रहो।
2: हेलो हेलो,
3: ओ आप मुझे सुन रहे हैं?
2: दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
2: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
4: आओ सुनो, दुनिया का लोगो, सबसे बड़ा है बॉलीवुड तमाशा का शो जो चलता है रेडियो धूम में आरजे राज के साथ। आप सुन रहे हो रेडियो धूम पर बॉलीवुड तमाशा, हक चिके टक चिके टा, अरे धूम मचाते रहो ना, आओ।
5: अरे भाई, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो अब हम चलते हैं। हाँ? लेकिन जाने से पहले आपको एक काम करना होगा।
6: आप सुन रहे हैं जी रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आर चिराज के साथ, नाम तो सुना ही होगा। जाने से पहले बहुत जरूरी काम है जी, हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लॉगिन कीजिए, टाइप कीजिए www.dhoommedia.com। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, रेडियो धूम USA के नाम से सर्च करके। और ऐप तो डाउनलोड करनी पड़ेगी ना भाई, और ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड फोन है चाहे आईफोन है, रेडियो धूम के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए रेडियो धूम बॉलीवुड तमाशा अपने आरजे राज के साथ। धूम मचाते रहो भाई।

0: Kensington.
1: Pittsburgh.
2: The time is now 4:05. The current temperature, 73.
3: Then tune into Radio Doom. For Crazy Hour. अगर दिल कहता है मन मा इमोशन जागे रे मन मा इमोशन जागे then tune into Radio Doom for Crazy Hour.

0: रोमांटिक गाने और चटपटी बातें ट्यून इनटू रेडियो धूम फॉर क्रेजी आवर।
1: और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला।
2: म्यूजिकल थेपला
1: हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: रेडियो धूम,
1: धूम मचाते रहो।
3: बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: टेन
1: इंडिया टॉप टेन
0: हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
2: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। All State Lenders Corp has been satisfying hundreds of customers every year with their mortgage needs. Chahe aap first time home buyer ho ya refinance karwana hai, koi business ya commercial property buy karni hai, call 732-951-0333 to speak to one of our loan officer for a free consultation. All State Lenders, aapke khwabon ka gullak. Call 732-951-0333 or visit www.aslcmortgage.com.
3: NMLC ID 224649 Equal Housing Lender.

0: गाने भी होंगे, बातें भी चलेगी और सवाल भी होगा। ट्यून इन टू रेडियो धूम फॉर क्रेजी आवर।
1: यही तो आर्ट्स है, बाकी सब तो विज्ञान है। यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान है। जब आप इतने सारे फीडबैक देते हो, जब आप हमें DM करते हो, जब आप इतनी सारी वैरायटी ऑफ बातें शेयर करते हो, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते हो। एंड हाँ, एक प्रॉमिस तो रेडियो धूम का भी, शिकायत का मौका नहीं देंगे। रेडियो धूम पर इन्जॉय करो धूम मचाने वाले गाने, सुनते हुए क्रेजी आर आरजी श्रेया के साथ। तो भाई, ऐसी अगर क्रेजी क्रेजी बातें आपको शेयर करनी है, अपने बारे में बताना है, मुझसे मेरी बारे में पूछना है, क्रेजी आर के बारे में अगर आपको अपनी स्पेशल वाली धूम मचाने वाली बातें शेयर करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो और आर फेसबुक पेज, जहां पर आपको मिलेगा रेडियो धूम USA के नाम से। रेडियो धूम USA के नाम से आपका हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा, एंड जैसे आप लाइक करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू गोना फॉलो अस, एंड उसके बाद अपडेट पे अपडेट मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि रेडियो धूम आपको अपडेटेड रखता है, प्लस वो गाने सुनाता है जिसे आपका दिल चाहता है। सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो धूम, तुम मत चाहते रहो।

का तेरा हो लिया तेरे हुस्न के पानी में बेबी मैंने अपना मुंह धो लिया ऐसे तू नाचे जैसे बाग में नाचे मोरनी नजर पहली में दिल ले गई तू दिलों की चोरनी।

0: बता
1: भाई, एक सवाल का जवाब दो ना।
0: तू नहीं मानेगा, पूछ कौन सा सवाल है आज। ऐसा वैसा पूछा ना तू बचेगा नहीं। उदय कंट्रोल।
1: उदय भाई छगास, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखो तो भी गर्म रहती है।
0: ऐसी कौन सी चीज है भाई? कोई चीज नहीं है जो फ्रिज में रखकर भी गर्म रहती है।
1: उदय भाई वेरी सिंपल, गरम मसाला। उसे फ्रिज में रखोगे तो वो गरम मसाला ही रहेगा।
0: तू मार खाएगा, भाग जा यहाँ से मजनू। उदय कंट्रोल।
1: क्या उदय भाई, इतने आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। छगास।
2: मजनू और उदय की बातें सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो धूम। छगास, धूम मचाते रहो।
3: आप सुन रहे हैं क्रेजी आवर ओनली ऑन रेडियो धूम।
4: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
5: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी। मिलदी है खुशी तेनू हसदे देख के, सानू मौत भी आ जावे तां वी ना रोवी। मिट्टी दी खुशबू पंजाबी म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटाक ठोको ताली।
6: Welcome to Radio Dhoom USA. ప్రతి శనివారం 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యుఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో dhoommedia.com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు. ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు. You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday.
7: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. We emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
8: Where hit music lives.
3: Only on Radio Dhoom.

0: अगर आप क्रेजी हो then tune into Radio Dhoom for Crazy Hour.
1: Corner Seat. Monday to Thursday, शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक only on Radio Dhoom. धूम मचाते रहो.
2: तो जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12. ओहो मजा आ जाएगा भी. क्यों भाजी? ओ ब्रो क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली. धूम मचाते रहो.
3: हेलो जी, हेलो, सलाम, आदाब, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, और जनाब क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है? रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया, जो करती है आपको फुल ऑन एंटरटेन. सो स्वीटहार्ट्स, मैं आपसे मिलने आऊंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को हर सुबह 7 बजे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड अमेजिंग वाली इन्फॉर्मेशन. कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड ट्रैक्स का सिलसिला कभी नहीं थमता. धूम मचाते रहो.
4: हेलो. ओह, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं. सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग. सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम.
5: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम.
4: धूम मचाते रहो, मचाते रहो.
0: अब तक सिर्फ ऐश्वर्या ने कहा था,
6: ऐश्वर्या ने कहा था,
0: लेकिन अब आप भी कहेंगे,
6: आप भी कहेंगे.
0: Tune into Radio 2 for Crazy Hour.

0: आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तेरे पास?
1: मेरे पास रेडियो धूम का ऐप है।
0: Then tune into Radio Thun. Radio Thun. For Crazy Hour.

0: New Kensington,
1: Pittsburgh.
2: The time is now 5:02. The current temperature 73.
3: Query, query, query. सवाल भी सवाल, ढेर सारे सवाल, ले रहे सवालों का है एक जवाब. Radio Doom, जहाँ पर आप ट्यून है. धूम मचाने वाले गाने एंजॉय कर रहे हैं आप सुनते हुए क्रेजी आर आरजे श्रेया के साथ. यार सुपर क्रेजी सी बात है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ऑन आर फेसबुक एंड इंस्टा रेडियो धूम USA पर. सो जी ऐसे DM कर अपने सवालों के जवाब का इंतजार करने से बेटर है कि आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर लो. सिंपल है यार, www.doommedia.com. यहाँ पर आप हमारे बारे में डिटेल भी जान सकते हैं और इफ यू वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट अस तो वो सारे सवालों के जवाब भी आपको doommedia.com पर मिल सकते हैं. और इसी के साथ इफ यू वांट टू ऐड विद अस, इफ यू वांट टू गेट एडिट टू अस, तो ये वाला काम भी वहां पर हो सकता है किधर, www.doommedia.com पर. सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो धूम, धूम मचाते रहो.

0: Steado.
1: बाला भैया की सुबह की खुशी में पेश है सोनी बैंड की खास पेशकश, सुनिए।

0: दून। दवी और सजनों, आपके संडे का म्यूजिकल सफर हो गया है और भी मीठा, क्योंकि आपके लिए आ गया है नया गुजराती म्यूजिकल शो म्यूजिकल थेपला। म्यूजिकल थेपला हर संडे सुबह 10 से 11 ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: Once again, hello जी, good evening कहूँ या फिर good night। वैसे good night कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक गुड वाली बात। Actually ना, I'm so sure कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी, पूरे टैंट्रम के साथ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। चार काम हुए होंगे, दो काम छूटे होंगे, पांच एडिशनल काम किए होंगे और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे, यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना। सो

0: गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार, जो भी किया जैसा किया अच्छा किया, ट्रस्ट मी आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो, आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे, अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
1: मुकम्मल किताब हूँ तेरा ही अल्फाज हूँ, अधूरा सा ख्वाब हूँ पर लाजवाब हूँ। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7 ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: हम लोग भी ना दुनिया में एक मिसाल हैं जुगाड़ के लिए। तोंद निकली है पर फिट दिखना है तो शर्ट थोड़ी ढीली पहन लेंगे। बिना फ्रिज के ठंडा पानी पीना है तो कूलर में रख के ठंडा कर लेंगे। एग्जाम टाइम में एक किताब को दो दोस्तों के साथ पढ़ना है तो आधी आधी करके पढ़ लेंगे। पार्टी में जाने के लिए एक बाइक और लोग तीन तो थोड़ा आगे पीछे हो लेंगे, पर घर लेने के लिए अब जुगाड़ नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कंपनी इज हियर टू हेल्प यू। ऑल स्टेट लेंडर्स कॉप हैज बीन सैटिस्फाइंग हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स एवरी ईयर विद देयर मॉर्गेज नीड्स। चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो या रीफाइनेंस करवाना है, कोई बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, कॉल 732-951-0333 टू स्पीक टू वन ऑफ आवर लोन ऑफिसर फॉर अ फ्री कंसल्टेशन। ऑल स्टेट लेंडर्स आपके ख्वाबों का गुल्लक। कॉल 732-951-0333 और विजिट www.aslcmortgage.com।
3: NMLC ID 224649। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
4: You are listening to Crazy Hour. Only on Radio Doom.

चाली रे देवा, अरे मुझे नहीं इन आने वाले गानों को। जी हाँ, रेडियो धूम पर मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया, और यहाँ पर मैं प्ले करने वाली हूँ आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। सो एंजॉय कीजिए एंड धूम मचाते रहिए।

0: यही तो आर्ट्स है, बाकी सब तो विज्ञान है. आई मीन यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान है. जब आप इतने सारे फीडबैक देते हो, जब आप हमें डीएम करते हो, जब आप इतनी सारी वैरायटी ऑफ बातें शेयर करते हो, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते हो. एंड हाँ, एक प्रॉमिस तो रेडियो धूम का भी है, शिकायत का मौका नहीं देंगे. रेडियो धूम पर इन्जॉय करो धूम मचाने वाले गाने सुनते हुए क्रेजी आर आरजे श्रेया के साथ. तो भाई, ऐसी अगर क्रेजी क्रेजी बातें आपको शेयर करनी है, अपने बारे में बताना है, मुझसे मेरे बारे में पूछना है, क्रेजी आर के बारे में अगर आपको अपनी स्पेशल वाली यू नो धूम मचाने वाली बातें शेयर करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो और आर फेसबुक पेज, जहां पर आपको मिलेगा रेडियो धूम यूएसए के नाम से. रेडियो धूम यूएसए के नाम से आपका हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा. एंड जैसे आप लाइक करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू गोना फॉलो अस, एंड उसके बाद अपडेट पे अपडेट मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि रेडियो धूम आपको अपडेटेड रखता है, प्लस वो गाने सुनाता है जिसे आपका दिल चाहता है. सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो धूम, तुम मत चाहते रहो.
1: कृपया ध्यान दीजिए,

0: उदय भाई कैसे हो? उदय भाई झास।
1: मैं तो अच्छा हूँ मजनू। तो फिर आ गया, फिर सवाल पूछेगा, मेरा दिमाग खाएगा, मुझे पता है। चल पूछ, आज तो तेरे सवाल का जवाब देकर रहूंगा।
0: उदय भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग खाने के लिए खरीदते तो हैं लेकिन उसे कभी खाते नहीं? कौन सी चीज है बताओ ना।
1: ऐसी कौन सी चीज है, अगर खाने के लिए लेंगे तो उसे खाएंगे ही ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। तू बता कौन सी चीज है, आज तू जवाब दे।
0: उदय भाई इसका जवाब है कि प्लेट्स, कटोरियां। खाने के लिए हम लेते हैं लेकिन उसे खाते नहीं। झकास।
1: मार खाएगा, भाग जाए यहाँ से। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अच्छा, सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते।

अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी फरमाइश का गाना नहीं सुनेंगे? रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं अपनी आरजे श्रेया को, एंड यहाँ पर मैं प्ले करने वाली हूँ आपका रिक्वेस्ट किया हुआ सॉन्ग। सो एंजॉय कीजिए एंड धूम मचाते रहिए।

0: आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तेरे पास?
1: मेरे पास रेडियो धूम का ऐप है।
0: Then tune into Radio Dhoom. Radio Dhoom. For crazy hour.
2: Once again, hello जी, good evening कहूँ या फिर good night. वैसे good night कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक good वाली बात. Actually ना, I'm so sure कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी, पूरे tantrum के साथ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है. चार काम हुए होंगे, दो काम छूटे होंगे, पांच additional काम किए होंगे और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे, यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला. यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना. सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार. जो भी किया, जैसा किया, अच्छा किया. ट्रस्ट मी, आई एम प्राउड ऑफ यू. और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो. आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे. एंड बाय द वे, अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर. एज ऑलवेज, धूम मचाते रहो.
3: हेलो, हाय, एम ट्रू. मेरा नाम एम ट्रू, आई मीन मैं हूँ आपके आरजे श्री आपके साथ और मैं रहती हूँ आपके कानों के पास रेडियो धूम पर मंडे टू फ्राइडे शाम 4 से 7 करने आपसे ढेर सारी बातें. क्या बात, कैसी बात और किस लिए वाली बात, इन सारे लॉजिक के साथ मिलने वाली हूँ आपको रेडियो धूम पर. तो कान टिका के दिल लगा के सुनते रहो रेडियो धूम, धूम मचाते रहो.

0: रही हैं जमकर वायरल, और इसके अलावा बात करेंगे देश दुनिया की हर हट के खबर के बारे में। कब? हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे मैं मिलूंगी आपको ओनली ऑन रेडियो धूम। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मचाइएगा धूम, मचाते रहो।
1: हेलो हेलो, ओ, आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
2: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
1: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
3: अगर दिल कहता है
4: मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे,
3: देन ट्यून इन टू रेडियो धूम फॉर क्रेजी आवर।

0: Radio Tune for crazy hour. Laughter box. Laughter box.
1: अबे एक बात बता, तेरे में इतना attitude कब से आ गया भाई?
2: कब से? अबे पैदा होते ही attitude आ गया था तेरे भाई में।
1: पैदा होते ही? वो कैसे?
2: अबे पैदा होते ही 1.5 साल तक बात नहीं करती तेरे भाई ने किसी से। नर्स ने भी कहा था कितना क्यूट है, रिप्लाई नहीं दिया।
0: Laughter box. Laughter box.
3: Good morning Pittsburgh. Good morning Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Hello hello hello. Hello hello hello. This is RJ Mahi. This is RJ Mahi from Radio Dhoom. Radio Dhoom.
0: Suna na bole. Hello Pittsburgh. Hello Pittsburgh. Monday to Friday 7 se 10 only on Radio Dhoom. Dhoom machate raho.
4: Do you have the swag? Want to rock the Pittsburgh? Want to be an RJ? Be a shining star with Radio Dhoom. You can contact us info@dhoommedia.com or you can give us a call at 412-455-5700 or log on to www.dhoommedia.com.
5: Here we go.
6: 11:50 a.m.
7: WMNY,
6: New Kensington,
7: Pittsburgh.
8: The time is now 6 o'clock.
9: The current temperature, 7 degrees.

ओ भाई, बाकी बातें बाद में, पहले सेहत जरूरी है और सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है जी। तभी तो रेडियो धूम कहता है स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बस तंदुरुस्त बने रहो और धूम मचाते रहो, सुनते रहिए रेडियो धूम। आहो वाह।

कंपोजर का, सिंगर का, म्यूजिक डायरेक्टर का, सबका लगा रहे अपन। ये सुना, अब ये सुनो। कौन बाप है, कौन बेटा है, अपन को सब मालूम है। आपको भी जानने का है तो मेरे साथ सुनते रहो द गेम ऑफ सॉन्ग्स।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
1: Once again, hello जी, good evening कहूँ या फिर good night। वैसे good night कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक good वाली बात। Actually ना, I'm so sure कि मेरी तरह आपने भी पूरे दिन भर की लिस्ट बनाई होगी, पूरे tantrum के साथ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। चार काम हुए होंगे, दो काम छूटे होंगे, पांच additional काम किए होंगे, और आप शायद अभी ये सोचने के मूड में होंगे यार दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना। सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार, जो भी किया जैसा किया अच्छा किया, ट्रस्ट मी आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आंखें बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो, आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे, अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर। एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
2: बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम।

0: 10 इंडिया टॉप 10 हर संडे शाम 4 से 5 ओनली ऑन रेडियो धूम।
1: यू आर लिसनिंग टू क्रेजी आवर ओनली ऑन

यही तो आर्ट्स है, बाकी सब तो विज्ञान है. आई मीन यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान है. जब आप इतने सारे फीडबैक देते हो, जब आप हमें डीएम करते हो, जब आप इतनी सारी वैरायटी ऑफ बातें शेयर करते हो, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते हो. एंड हाँ, एक प्रॉमिस तो रेडियो धूम का भी है, शिकायत का मौका नहीं देंगे. रेडियो धूम पर इंजॉय करो धूम मचाने वाले गाने सुनते हुए क्रेजी आर आरजी श्रेया के साथ. तो भाई, ऐसी अगर क्रेजी क्रेजी बातें आपको शेयर करनी है, अपने बारे में बताना है, मुझसे मेरे बारे में पूछना है, क्रेजी आर के बारे में अगर आपको अपनी स्पेशल वाली यू नो धूम मचाने वाली बातें शेयर करनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो और आर फेसबुक पेज, जहां पर आपको मिलेगा रेडियो धूम यूएसए के नाम से. रेडियो धूम यूएसए के नाम से आपका हमारा फेसबुक पेज मिल जाएगा. एंड जैसे आप लाइक करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू गोना फॉलो अस, एंड उसके बाद अपडेट पे अपडेट मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि रेडियो धूम आपको अपडेटेड रखता है, प्लस वो गाने सुनाता है जिसे सुनना आपका दिल चाहता है. सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो धूम, धूम मचाते रहो.

0: अपने उदय और मजनू के साथ। क्यों उदय भाई,
1: तू फिर आ गया पूछ के सवाल पूछना है आज तूने। उदय कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल।
0: उदय भाई ये बताओ, ऐसा कौन सा बल है जो अपने चार पैरों पर खड़ा रहता है?
1: ऐसा कौन सा बल है भाई जो चार पैरों पर खड़ा होता है?
0: वेरी सिंपल होता है भाई, टेबल। चास टेबल पे चाय रखो और पी लो।
1: नर खाएगा भाग जा यहाँ से। कैसे कैसे सवाल, कैसे कैसे जवाब देता है तू। कंट्रोल उदय कंट्रोल, सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो। अच्छा है, अच्छा है।
2: अब तक सिर्फ ऐश्वर्या ने कहा था,
3: ऐश्वर्या ने कहा था,
2: लेकिन अब आप भी कहेंगे,
3: आप भी कहेंगे।
2: Tune in to Radio Thum for Crazy Hour।
4: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं क्या आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक, ओपन माइक, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो। मुकम्मल किताब हूं, तेरा ही अल्फाज हूं, अधूरा सा ख्वाब हूं पर लाजवाब हूं। गजलनामा हर संडे शाम 5 से 7, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
5: वेलकम टू रेडियो धूम यूएसए। प्रति शनिवार 1 గంట నుంచి 2 వరకు మా తెలుగు ప్రోగ్రామ్ ని వినొచ్చు। ఎలా అంటారా, మీ సెల్ ఫోన్స్ లో అంటే ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఫోన్ లో రేడియో ధూమ్ యూఎస్ఏ అన్న యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వినొచ్చు, లేదా ఆన్లైన్ లో ధూమ్ మీడియా.com లో వినొచ్చు, లేదా సులభంగా అలెక్సా కి కమాండ్ ఇచ్చి వినొచ్చు। ఎలా అంటారా, అలెక్సా ప్లే రేడియో WMNY అని కమాండ్ ఇస్తే చాలు। You can listen to our Telugu program between 1 and 2 on every Saturday।
6: रात हुई जब शाम के बाद, तेरी याद आई हर बात के बाद, हमने खामोश रहकर भी देखा, फिर भी तेरी आवाज आई हर सांस के बाद।
4: रेडियो धूम फीचरिंग द एवरग्रीन सॉन्ग ऑफ बॉलीवुड ऑन कैसेट क्लासिक, मंडे टू संडे रात 10 से 12, ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
7: आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तेरे पास?
8: मेरे पास रेडियो धूम का ऐप है।
2: Then tune into Radio Thum for Crazy Hour।

0: अगर दिल कहता है
1: मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे
0: Then tune into Radio Doom for Crazy Hour
2: Hangover हर सैटरडे और संडे सुबह 7 से 11 only on Radio Doom धूम मचाते रहो।
3: क्या कहूँ तेरी इन जालिम नजरों के बारे में, दिल कहता है कदमों में कायनात रख दूँ। यूँ तो लिखने को दो चार लाइनें लिख देते हैं लोग, पर आंखें तेरी ऐसी कि पूरी किताब लिख दूँ। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले बॉलीवुड ट्रैक्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। वेल, ऐसी ही अमेजिंग वाली शायरी कोई आपके लिए भी बोले, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आंखों का ख्याल रखें और आपकी आंखों की खूबसूरती बरकरार रहे। सो गर्ल्स, ऐसे ही अमेजिंग वाले ब्यूटी टिप्स जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। कब? अरे हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूजडे थर्सडे को सुबह 7 बजे। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
4: हेलो हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? That's great यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर, तो कनेक्ट टू मी ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
0: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
4: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग, गुड मॉर्निंग पिट्सबर्ग। हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, दिस इज आरजे माही, दिस इज आरजे माही From Radio Dhoom, Radio Dhoom.
0: Sunna na bhule, Hello Pittsburgh, Hello Pittsburgh. Monday to Friday, 7 se 10, only on Radio Dhoom. Dhoom, machate raho.
6: Ye duriya,
0: duriya mitane. Tune into Radio Dhoom,
6: Radio Dhoom
0: for crazy hour.

0: बेटा पप्पू, इस लायन की इंग्लिश बनाओ। उसने अपना काम किया और करता ही गया। He has done his work and dun dun dun dun dun dun dun dun dun.
1: Laughter box, laughter box.
2: अबे सर्किट, अपने को ये बताना तनुश्री और नाना का क्या लफड़ा चल रहा है, और अपुन को ये भी बताना कि सैफ ने बेबो के साथ शादी क्यों की, पहली शादी क्यों तोड़े लिए बाबा।
3: क्या भाई, अगर आपको ये सब कुछ जानने का है बॉलीवुड की सारी बातें तो सुनने का पड़ेगा बॉलीवुड तमाशा, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 4 सिर्फ रेडियो धूम पर। भाई बोले तो
2: मेरे को पता है, धूम मचाते रहने का, धूम मचाते रहो।
3: क्या भाई, बिल्कुल सही बोले भाई।
4: What should I wear?
5: Should I take the highway or go through town?
4: Do I pick up the kids early today?
6: The average adult makes thousands of decisions a day. Most are small, but some could be life-changing. Before you get behind the wheel, impaired by drugs or alcohol, make the right decision. Decide to call a friend. Decide to call a cab. Decide to download a rideshare app. But don't decide to drive. For more information, visit PennDOT.gov/safety. Paid for with Pennsylvania taxpayer dollars.
7: Pennsylvanians who work or volunteer with children may need to get their child abuse clearances. If you're not sure, first, go to this website, keepkidssafe.pa.gov. Second, find out if you need clearances. Then, apply online. Getting clearances is easier and less expensive than ever. Pennsylvania means business when it comes to protecting our children. Find out if you need your child abuse clearances at keepkidssafe.pa.gov.
8: Commonwealth of Pennsylvania, Tom Wolf, Governor. Paid for with Pennsylvania taxpayer dollars.

0: ये तो तब मालूम होगा जब आप उसे सुनेंगे। Tune into Radio Dhoom for Crazy
1: Hour। Query, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ढेर सारे सवाल, ढेर इन सवालों का है एक जवाब। Radio Dhoom, Radio Dhoom, जहाँ पर आप ट्यून है। धूम मचाने वाले गाने एंजॉय कर रहे हैं आप सुनते हुए क्रेजी आर आरजी श्रेया के साथ। यार सुपर क्रेजी सी बात है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ऑन आर फेसबुक एंड इंस्टा रेडियो धूम यूएसए पर। सो जी ऐसे डीएम कर कर अपने सवालों के जवाब का इंतजार करने से बेटर है कि आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर लो। सिंपल है यार, www.dhoommedia.com। यहाँ पर आप हमारे बारे में डिटेल भी जान सकते हैं और इफ़ यू वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट अस तो वो सारे सवालों के जवाब भी आपको dhoommedia.com पर मिल सकते हैं। और इसी के साथ इफ़ यू वांट टू ऐड विद अस, इफ यू वांट टू गेट एडिट टू अस, तो ये वाला काम भी वहाँ पर हो सकता है किधर, www.dhoommedia.com पर। सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
2: सर चढ़ी है धूम धूम,
3: रेडियो धूम, रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।

0: NY, New Kensington,
1: Pittsburgh.
2: The time is now 7 o'clock.
3: The current temperature, 68.
4: Aap sun rahe hain, Gesit Classic, Gesit Classic.
5: Pyar mein pyar na ho, jab dard mein yaar na ho, jab aansu mein muskaan na ho, jab lafzon mein zubaan na ho, jab saansein bas yun hi chale, jab har din mein raat dhale, jab intezaar sirf waqt ka ho, जब याद उस कम वक्त की हो, क्यों हूँ मैं राही जब वो है किसी और की मंजिल, धड़कनों ने साथ छोड़ दिया, ऐ दिल है मुश्किल।
4: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
1: सवेरे शाम तेरा नाम जप रही हूँ मैं, मुझे करार नहीं है, तड़प रही हूँ मैं। तू दिल की प्यास बुझाने के वास्ते आ जा, तेरी जुदाई के शोलों में तप रही हूँ मैं।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो धूम, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है। तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, अगर ये आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इससे बच सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर रहने के दौरान कोई भी सामान छूने, बस ट्रेन में जर्नी करने और लोगों से मिलने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप अपने हाथ हैंड वॉश को लेकर अलर्ट रहें। पब्लिक प्लेस से आने के बाद घर का कोई भी सामान टच करने से पहले हाथ अच्छी तरह से धुलें। अगर आपको किसी भी तरह की फिजिकल इलनेस फील हो रही है तो बेहतर है कि आप पब्लिक प्लेस पर जाएं ही नहीं और घर में आराम करें, क्योंकि जिस समय हमारी बॉडी थकी हुई महसूस कर रही होती है उस समय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर भी पहले की तुलना में कमजोर होती है। मेडिकल फील्ड एक्सपर्ट लोगों का कोरोना वायरस के चलते पैनिक ना होने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि पैनिक होकर किसी भी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता, सावधानी ही बचाव है। तो आप भी बचिए कोरोना वायरस से। रेडियो धूम की तरफ से ये मैसेज आपकी सेहत के हित में जारी। सुनते रहिए रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: Once again, hello जी, good evening कहूँ या फिर good night। वैसे good night कहने से पहले आपसे शेयर करती हूँ एक good वाली बात।
2: उनकी तरफ

0: किया?
1: यस, कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया आपको पता है ना, सो हैव अ गुड वाली स्माइल ऑन योर फेस यार। जो भी किया, जैसा किया, अच्छा किया, ट्रस्ट मी आई एम प्राउड ऑफ यू। और क्या चाहिए, सपने बस आके बंद करो, फेवरेट वाले गाने सुनते रहो, आई एम सो श्योर कि अच्छी वाली नींद के साथ अच्छे सपने और अच्छे अच्छे लोग उसमें जरूर आएंगे। एंड बाय द वे, अच्छे गाने आपके लिए आ रहे हैं रेडियो धूम पर, एज ऑलवेज धूम मचाते रहो।
2: बॉलीवुड टॉप 20 हर सैटरडे शाम 3 से 5 बजे तक ओनली ऑन रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
1: रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव थापा, रात भर सर्द हवा चलती रही, रात भर हमने अलाव थापा। मैंने माजी से कई खुश्क सी शाखें काटी, तुमने भी गुजरे हुए लम्हों के पत्ते तोड़े। मैंने जेबों से निकाली सभी सूखी नज़में, तुमने भी हाथों से मुरझाए हुए खत खोले। अपनी इन आंखों से मैंने कई मांझे तोड़े और हाथों से कई बासी लकीरें फेंकी। तुमने पलकों पे नमी सूख गई थी सो गिरा दी। रात भर जो भी मिला उगते बदन पर हमको, काट के डाल दिया जलते अलाव में उसे। रात भर फूंकों से हर लौ को जगाए रखा और दो जिस्मों के ईंधन को जलाए रखा। रात भर बुझते हुए रिश्ते को तापा हमने।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
1: एक सन्नाटा भरा हुआ था एक गुब्बारे से कमरे में तेरे फोन की घंटी के बजने से पहले। बासी सा माहौल ये सारा थोड़ी देर को धड़का था। सांस हिली थी, नब्ज चली थी, मायूसी की झिल्ली आंखों से उतरी कुछ लम्हों को। फिर तेरी आवाज को आखिरी बार खुदा हाफिज कह के जाते देखा था।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
2: कोई सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर होना भी जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि आप में कोई टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि आपकी कहीं पहुंच हो। खुला मंच है, आओ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। ओपन माइक। ओपन माइक। ऑनलाइन रेडियो धूम, धूम मचाते रहो।
3: ओगुरु मेरी किसी गलत नाराज ना होवी, अखियां नू हंजुआ नाल ना धोवी। मिलदी है खुशी तेनू हसदे देख के, सानू मौत भी आ जावे तां वी ना रोवी। मिट्टी दी खुशबू। मिट्टी दी खुशबू। पंजाबी म्यूजिकल शो ओनली ऑन रेडियो धूम। रेडियो धूम हर संडे दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ओनली ऑन रेडियो धूम। खटैक ठोको ताली।
4: Opinions stated by various contributors to Radio Dhoom or its radio programs are not to be considered as endorsed by Dhoom Media LLC. Listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. We emphasize the importance of keeping an open mind and not construing the data, products and services as factual.
3: आप झूम जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम। खटैक ठोको ताली। धूम मचाते रहो।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
5: तुमने हमारे प्यार का अच्छा सिला दिया। तुमने हमारे प्यार का अच्छा सिला दिया। दीवाना कह के अपनी नजर से गिरा दिया।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।
1: पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, फिर जो निगाह है यार कहे मान जाइए। कुछ कह रही है आपकी सीने की धड़कने, मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक। कैसेट क्लासिक।

0: ओ जी क्या बात है जी, अब रेडियो धूम पर लगेगा जी तड़का, क्योंकि अब आ रहा है जी आपका शो गरम मसाला शेफ कपिल वर्मा के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। ओहो मजा आ जाएगा भी। क्यों भाजी?
1: ओ गुरु क्या बात है, ये शो सुनकर जाओगे आप झूम, जब चलेगा गरम मसाला ऑन रेडियो धूम, खटाक ठोको ताली, धूम मचाते रहो।
2: ब्लैक कॉफी आपकी हेल्थ के लिए हेल्दी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी है। रेडियो धूम पर आप एंजॉय कर रहे हैं अमेजिंग वाले गाने और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे श्रेया। वेल, अगर आप ब्लैक कॉफी हर रोज अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। स्पेशली अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जिम से पहले हर रोज ब्लैक कॉफी लें। ब्लैक कॉफी आपके शरीर में एनर्जी को बनाए रखती है और इसके साथ साथ जो फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में उन्हें बर्न करने में भी हेल्प करती है। जी हाँ गर्ल्स, अगर आप फैट जो है अपनी बॉडी से वो कम करना चाहते हैं तो आपको ब्लैक कॉफ़ी जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और साथ ही साथ डिप्रेशन से फाइट करने में आपकी मदद करती है। कुछ ऐसे ही और हेल्थ टिप्स के साथ मैं मिलूंगी हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 4 बजे और ट्यूसडे थर्सडे हर सुबह 7 बजे, जहां पर आपकी हेल्थ का रखेंगे ध्यान। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए एंड धूम मचाते रहो।
3: हेलो हेलो, ओह आप मुझे सुन रहे हैं? दैट्स ग्रेट यार, पर मुझे कैसे पता होगा कि आप मुझे सुन रहे हो? एक काम कर सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो धूम पर तो कनेक्ट टू मी ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। सो कर रहे हैं ना, कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी यार, आई एम वेटिंग। सो स्टे कनेक्टेड टू रेडियो धूम।
4: सो कनेक्ट टू अस ऑन 412-226-5500 एंड कीप ट्यूनिंग रेडियो धूम।
3: धूम मचाते रहो, मचाते रहो।
5: सुनना ना भूले। हेलो पिट्सबर्ग, हेलो पिट्सबर्ग, मंडे टू फ्राइडे 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो धूम। धूम मचाते रहो।
6: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
7: दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों की दीने में, कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। वहीं एक रास्ता था टालियों का, जिस पे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सौंधे सावन के। उसी की सौंधी खुशबू से महक उठती हैं आंखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं। तुम्हें रोहतास का चलता कुआं भी तो दिखाया था, किले में बंद रहता था जो दिन भर, रात को गांव में आ जाता था कहते हैं।
6: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।

0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
1: कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूँ अपनी नज़मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूं या मुझसे हैं वो। वो सारी नज़में कि मैं समझता हूं वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
2: Want to rock the Pittsburgh? Want to be an RJ? Be a shining star with Radio Dhoom. You can contact us info@dhoommedia.com or you can give us a call at 412-455-5700 or log on to www.dhoommedia.com.
3: Everybody buckle up. Bum, bum, bum, bum, bum. Buckle up. Buckle up.
4: Can we go to the store?
3: Mom, buckle
4: can we get some ice cream?
3: Everybody, buckle up.
5: A lot goes on in the car, but you're in control. So only move when you hear the click that says they're buckled in. Never give up until they buckle up. Learn more at safercar.gov/kidsbuckleup. A message from the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
6: Knowing your breasts can save your life. Go to knowyourgirls.org. for the facts you need on breast health. Brought to you by Susan G. Komen and the Ad Council.
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।
7: वो दिन नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं रही, शायद तुझे हमारी जरूरत नहीं रही, कुछ भी नहीं बचा, दौलत भी खत्म हो गई, दौलत नहीं रही।
0: आप सुन रहे हैं कैसेट क्लासिक, कैसेट क्लासिक।